101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज है रविवार, शक संवत 1900

1943 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, ईस्वी सन 2026, दिनांक 7 जून, सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय

0: शिक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 212, 6:45 और संध्या 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की। श्रोताओ, आज इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आप सुनेंगे। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर होगा कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

दिन में 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। दिन में 11 बजे विविधा में सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक रंग का संपादित अंश, सहभाग डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नरोत्तम बेन, ममता वर्मा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। 3 बजे होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2:30 पर नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक पोस्टमैन का दूसरा भाग, के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद किया है पीएस कृष्णा स्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। 4:00 उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे, सैनिकों की शौर्य गाथा। आज महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की शौर्य गाथा आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम साज और आवाज। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। रात 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार और रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये विविध भारती है, आइए सुने श्री रामचरित मानस का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई ना कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी सेवकगण, सेनापति मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहाँ आए हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की आज सातवीं कड़ी।
1: रविंद्र जी, अब तक हमने तीन ताल, रूपक, एक ताल और झपताल, शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाए जाने वाले इन तालों की बात की
2: जी।
1: इस पर आधारित फिल्मों में जो गीत हुए हैं उनकी चर्चा की। अब थोड़ी चर्चा ललित संगीत में जो उपयोग किए जाते हैं ताल और उन पर आधारित जो फिल्मी गाने हैं उनकी बात करते हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप?
2: अभी ये जो है, जैसे तीन ताल, रूपक, एक ताल, झपताल, ये ख्याल गायन में इनका प्रयोग करते हैं
1: जी,
2: संगत के लिए, और उसमें विलंबित भी होता है, मध्यलय भी होती है और द्रुतलय भी होती है
1: जी।
2: अभी शास्त्रीय संगीत के अलावा हमारे भारतीय संगीत में उपशास्त्रीय संगीत है, तो उपशास्त्रीय संगीत जो है वो उसकी भी काफ़ी बड़ी विधा है और उसमें भी कई महान कलाकार जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है
1: जी।
2: तो ये जो उपशास्त्रीय संगीत है इसमें ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, बारामासा ऐसे कई सारे प्रकार है
1: जी।
2: तो ये जो प्रकार है इसमें उपयोग में लाए जाने वाले जो ताल है
1: जी,
2: उसमें प्रमुखता है कहरवा और दादरा। तो कहरवा जो है वो कहरवा फिल्मी गीतों में तो काफी गीतों में वो आया है, मतलब अनगिनत गीत है जिसमें कहरवा बजाया गया है, और कहरवा का एक अपना खुद का जो विशेषता है, कहरवा की विशेषता, मतलब जैसे अब हम लोग अगर तीन ताल का उदाहरण लेते हैं तो तीन ताल है 16 मात्रा
1: जी।
2: मतलब सम में आने के लिए हमको 16वीं मात्रा तक इंतजार करना होगा
1: जी।
2: कहरवा है 4 मात्रा, तो 4 मात्रा धागे न तीन अक धीन, तो ये हो गया फिर आसान। तो इसको इसलिए हम लोग ललित संगीत इसलिए कहते हैं कि वो उसमें सुलभता है, आसानी है, तो सुलभता आसानी होने की वजह से कहरवा में अनगिनत गीतों का निर्माण हुआ है।
1: और अलग अलग गीतों में रविंद्र जी कहरवा के अलग अलग रूप

0: देखने को मिलते हैं।
1: हाँ, कई सारे रूप है
0: जी।
1: तो इसमें हम लोग जो शुरू में बात कर रहे थे कि पैटर्न के बारे में, पैटर्न होते हैं
0: जी,
1: तो अभी केरवा जो है वो केवल ये मूल
0: ये उसका
1: केरवा है, धागे नती ना कदी ना
0: जी।
1: अब वो जो केरवा है वो गीतों के साथ में कई रूप बदल बदल के आया है, और हर गीत में हमको एक नया केरवा का रूप देखने को मिलता है
0: जी।
1: वो पैटर्न की वजह से है। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो पैटर्न तो गीतों के अनुसार कई सारे हैं, एक आध दो मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ।

0: ऐसे केरवा के कई सारे रूप
1: क्या है। बात है,
0: और इन सारे रूपों में हमको गीत सुनने को मिलते हैं। हम सुनते हैं गीत तो मतलब ऐसा कहने को मन नहीं करता कि ये केरवा बज रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका इतना सुंदर सुंदर रूप देखने को मिलता है कि बस उसको केवल सुनते जाए, उसका कोई नाम ना दे हम
1: जी,
0: लोग
1: जी। तो ये हर अलग ढंग में जो केरवा बजा है और उसका अलग रूप हमारे सामने आता है
0: जी।
1: तो ऐसे दो गीतों की झलक सुन लेते हैं
0: जी।
1: कुदरत फिल्म का गीत है तूने और रंगीले क्या जादू किया, लता जी के स्वर में, और दूसरा गाना है मिलन फिल्म का सावन का महीना पवन करे शोर। इन दोनों गीतों में केरवा अलग अलग ढंग से बज रहा है, तो ये जो इसकी खूबसूरती है, ये जो निरालापन है, सुनते हैं इन दोनों गीतों की झलक।

0: की विविधता जो देखने को मिली इन गीतों की झलक में श्रोताओं, इसके बाद रविंद्र जी से पूछना चाहेंगे कि कहरवा ताल का कोई और भी प्रकार है जिसे फिल्म संगीत में प्रयोग में लाया गया है?
1: हाँ, फिल्मी गीतों में लाया गया एक कहरवा का प्रकार है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में धुमाई ताल कहते हैं। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश या अन्य भागों में इसको कहरवा ही कहते हैं। तो कहरवा का ये जो आविष्कार है ये इसकी महाराष्ट्र की थोड़ी सी जो पार्श्वभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने कहा कि महाराष्ट्र में नाट्य संगीत की परंपरा थी,
0: जी
1: तो वैसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन की एक परंपरा रही है, दीर्घ परंपरा है, ये बहुत बड़ी परंपरा चलती आई। तो ये कीर्तन जो होता है इसमें एक धुमारी ताल का प्रयोग होता है। तो वो जो प्रयोग है, तो कीर्तन में अक्सर जो कीर्तन करने वाले हैं वो

0: करता हूँ। ये कीर्तन परंपरा में इस तरह का ये ताल
1: जी जी
0: बजाया गया, तो उसका ही सुगम स्वरूप जो है, हाँ, ललित स्वरूप वो

0: वाह,
1: ये कहरवा का ही एक अंग आ गया इसमें। तो इस अंग को लेकर भी फिल्मों में गीत बनाए गए हैं और वो काफी अच्छे गीत है
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किए हुए गीत है।
0: तो रविंद्र जी, ये जो एक कहरवा का रूप है जिसे धुमाड़ी कहा जाता है, क्या फिल्म संगीत में इसका उपयोग हुआ है?
1: हाँ बिल्कुल हुआ है, और मतलब वो उदाहरण बताने के लिए ही मैंने अभी उस ताल का जिक्र किया।
0: हाँ।
1: कि धुमाड़ी का प्रयोग जो है वो आप सब लोग जानते हैं, गाना अजहुन आए बालमा
0: सावन बीता जाए।
1: तो इसमें जो धुमाड़ी जो हम लोग महाराष्ट्र में जिसे कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो उसमें सुनने को मिलता है।
0: क्या बात है, सांझ और सवेरा फिल्म का बड़ा ही सुंदर गीत है, राग मधुवंती पर आधारित। तो सुनते हैं इस रचना को संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: शास्त्रीय संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।

आप सुन रहे थे बालयोगी फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। भरत व्यास के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। विविध भारती से श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम 101.9 FM और न्यूज ऑन EIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, सुबह 7:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे स्टूडियो से भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संगम और प्रणाम अयोध्या प्रसारित किया जाएगा सुबह 8:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आज की बात। इसी के अंतर्गत का आज खास होगा फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी। इसके अलावा सुबह 9:00 से आप सुनेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और सुबह 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम बातें आसपास की। दोपहर 12:30 से आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। दोपहर 1:00 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके बाद फेसबुक फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा आप सुन सकेंगे दोपहर 1:30 से। साथ ही 2:00 से गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतांजलि, और बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल जगत दोपहर 2:30 से, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और बच्चे बने पर्यावरण प्रहरी। इसी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा धरती माँ के श्रृंगार से लेकर हमारी धरती तक का सफर। वार्ताकार होंगी दीपिका शुक्ला। इसके अलावा रोचक जानकारी में बच्चे सुनेंगे भारत के समुद्र तटीय राज्य के बारे में, और प्रेरक व्यक्तित्व में बच्चे जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शाम 5:00 से प्रसारित किया जाएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही ज्ञान विज्ञान में आप जानेंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में। साथ ही इसी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:30 से, और शाम 6:10 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। इसके अलावा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और शाम 6:45 पर किसान भाई बहन सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। साथ ही भेंट वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे बैंक प्रबंधक गणेश शंकर यादव से राम प्रकाश पांडे के द्वारा की गई बातचीत, जिसका विषय होगा कृषकों हेतु KCC और फसल बीमा योजनाएं। 8:20 पर कार्यक्रम होगा शेर और गीत, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इसके बाद रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इसके अलावा समाचारों का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे अपने निर्धारित समय पर। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 7:18 हुए हैं। आपसे कुछ ही पलों में 7:20 पर आप सुनेंगे गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।

चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 265 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा

0: समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्ति पीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राज्य की रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और परिणामोन्मुख बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक

0: और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक संस्कृति, धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
1: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कल बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
2: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग PM सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: केंद्रीय

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर आगामी 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया, कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की बनी नई पहचान। मुख्यमंत्री ने की राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक परिणामोन्मुख बनाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। और प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी परीक्षा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परीक्षा की तैयारियों का किया गया पूर्वाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान।
3: वन जीरो वन पॉइंट नाइन एफ एम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
9: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
8: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
9: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
8: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
9: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को

0: कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: श्रोताओं, अमृत कलश में ये पहला भजन आपको सुनवाते हैं विपिन सचदेवा की आवाज में।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।
4: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830

0: किस 99.11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। अगला भजन आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
3: नेपाल के विदेश

0: मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुँचने का अनुमान है।
1: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीम टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली

0: भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काकामिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत

0: परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: वन जीरो वन पॉइंट नाइन एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुरसंगम में ये पहली गजल आइए सुनते हैं स्वाति नाटेकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।
1: प्रणाम अयोध्या। अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।
6: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
7: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
6: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पे
7: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
8: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
0: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी दोस्त प्रियंका। दोस्तों, उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो निवाला आज सुबह आपने अपनी थाली से उठाकर मुंह में डाला है वो कितना सुरक्षित था? क्या वो सिर्फ आपका पेट भर रहा था या अनजाने में आपको बीमार भी कर रहा था? जी हाँ, आज का दिन इसी बेहद गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने का है। आज 7 जून है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दोस्तों, आज हम और आप मिलकर ये जानेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उसे खेत से लेकर हमारी थाली तक सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। साथियों, जिंदा रहने के लिए सांस लेने के बाद अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है भोजन। लेकिन अगर यही भोजन दूषित हो जाए तो ये जिंदगी देने के बजाय जिंदगी छीन भी सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति दूषित और खराब खाना खाने की वजह से बीमार पड़ रहा है। इससे भी ज्यादा दुखद की बात यह है कि हर साल करीब 4,20,000 लोग असुरक्षित भोजन के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। और दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा शिकार हमारे मासूम बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। कुल मौतों में से 30% मौतें इन्हीं मासूम बच्चों की होती हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में ये फैसला लिया कि हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप

में मनाया जाएगा। इसके बाद 7 जून 2019 को पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर इस दिन को मनाया। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि सरकारों, किसानों, व्यापारियों और हम जैसे आम उपभोक्ताओं को ये याद दिलाता है कि भोजन की सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब तक हर स्तर पर बड़े कदम उठाए नहीं जाएंगे, तब तक हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल यानी साल 2026 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम भी इसी बात पर जोर देती है कि हमें हर साल हर हाल में भोजन के मानकों को बनाए रखना होगा। जब हम असुरक्षित भोजन की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल बासी या सड़ा हुआ खाना नहीं होता। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कीटनाशकों जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं जो नंगी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। दोस्तों, दूषित भोजन खाने से इंसान को डायरिया से लेकर कैंसर जैसी 200 से भी अधिक घातक बीमारियां हो सकती हैं। सोचिए, जिस भोजन को हम ताकत पाने के लिए खाते हैं, वही अगर बीमारियों का घर बन जाए तो कितनी बड़ी विडंबना होगी। लेकिन दोस्तों, इस समस्या का समाधान भी हमारे ही हाथों में है। WHO ने इसके लिए 5 बुनियादी मंत्र दिए हैं जिन्हें हम अपनी रसोई में आज से ही लागू करना अगर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। पहला मंत्र है सफाई। खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। दूसरा मंत्र है कच्चे और पके हुए भोजन को अलग रखना ताकि कच्ची सब्जियों के बैक्टीरिया पके हुए भोजन में ना मिले। तीसरा मंत्र है भोजन को अच्छी तरह पकाना, यानी भोजन का सही तापमान पर को पकाएं ताकि हानिकारक कीटाणु मर जाएं। चौथा मंत्र है भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखना, पके हुए खाने को लंबे समय तक बाहर ना छोड़ें। और पांचवा मंत्र है सुरक्षित पानी और साफ कच्ची सामग्रियों का उपयोग करना। और चलते चलते बस इतना ही कहेंगे दोस्तों कि अच्छा स्वास्थ्य एक महंगे अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बल्कि आपकी रसोई की साफ सफाई और जागरूक आदतों से शुरू होता है। सरकारें नियम बताएंगी, किसान अच्छी फसल उगाएंगे, लेकिन अंत में उस भोजन को अपनी थाली में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो आइए इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि ना तो खुद असुरक्षित भोजन करेंगे और ना ही अपने परिवार को करने देंगे। जी हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या को अपनी दोस्त प्रियंका के साथ।

दोस्तों प्रणाम, अयोध्या में अब आइए सुनते हैं फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी। दोस्तों भारत संगीत और संस्कृति का देश है, जहां अनेक प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी कला से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध पार्श्व और प्रेरणादायक गायिका हैं पलक मुच्छल, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज और सामाजिक सेवा से देश विदेश में पहचान बनाई है। पलक मुच्छल का जन्म 30 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम राजकुमार मुच्छल और माता का नाम अजिता मुच्छल था। बचपन से ही इन्हें संगीत में रुचि थी और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में से ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही प्राप्त की और आगे चलकर संगीत को अपना करियर बनाया। उनके गाए गीत मेरी आशिकी और कौन तुझे बहुत ही लोकप्रिय हुए और लोगों के दिलों को छू गए।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: प्रणाम अयोध्या में, आप सुन रहे हैं फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी और हम बात कर रहे हैं पलक मुछल की। पलक मुछल ने बॉलीवुड में अपनी पहचान एक सफल पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर के रूप में बनाई है। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 2012 में एक था टाइगर, 2013 में आशिकी 2, 2014 में किक और एक्शन जैक्शन, 2015 में प्रेम रतन धन पायो, 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, 2017 में काबिल, 2018 में बागी 2 और 2019 में पल पल दिल के पास जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। पलक मुछल केवल एक गायिका ही नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी हैं। बचपन से ही उन्होंने गरीब और बीमार बच्चों की मदद करने का संकल्प लिया। वे देश विदेश में कई जगहों पर शो करती हैं और उनसे प्राप्त धन को गरीब बच्चों के इलाज के लिए दान करती हैं। उनके प्रयासों से हजारों बच्चों की जान बचाई जा चुकी है। 6 नवंबर 2022 को उन्होंने संगीतकार मिथुन से शादी की, जिनके साथ उन्होंने पहले आशिकी 2 के साउंड ट्रैक पर काम किया था।

दोस्तों पलक मुचल और उनके छोटे भाई पलाश मुचल भारत और विदेशों में सार्वजनिक मंच पर गाने गाकर हृदय पीड़ित छोटे बच्चों का इलाज करवाते हैं। उसके लिए काफी चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने मई 2013 तक चंदा इकट्ठा कर 572 बच्चों की जान बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। पलक के इस समाज सेवा में योगदान के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। दोस्तों पलक की उपलब्धियों की बात करें तो पलक मुचल को अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें कई फिल्मी पुरस्कारों के लिए नामांकन और सम्मान भी मिला है। इसके अलावा उन्हें समाज सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया है।

दोस्तों, पलक मुछेल का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर व्यक्ति में प्रतिभा के साथ साथ सेवा भाव भी हो तो वो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने अपनी आवाज का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी किया है। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि पलक मुछल एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने संगीत और सेवा कार्यों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, पलक मुछल का जीवन हर युवा के लिए एक आदर्श है।

श्रोताओं भाई सुनते हैं समाचार पत्रों से। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में प्रभुचरण नामक 8वीं गैलरी भगवान राम के अवतरण और उनके यात्रा पड़ावों की महत्ता बताएगी। 6000 मेहमान बनेंगे ऐतिहासिक पल के साक्षी। शेषावतार मंदिर पर 23 जून को होगा ध्वजारोहण। अयोध्या नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। अयोध्या में नगर निगम ने यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शहर के 5 प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMM का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे यातायात नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा और नागरिकों को रेड एवं ग्रीन सिग्नल के अनुसार सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। अयोध्या में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती से आप दोगुनी करने पर जोर। अयोध्या में नजूल भूमि और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर कथित अतिक्रमण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नगर निगम और जिला प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 अगस्त को आयोजित होगा। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया। राम मंदिर को मिला सुरक्षा कवच। 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा श्री राम मंदिर। पत्थरों पर लगी विशेष रासायनिक कोटिंग। कुलपति ने किया परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं शुरू। PG व PhD की परीक्षाएं 9 जून से।

0: प्रणाम अयोध्या अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: प्रणाम अयोध्या।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
5: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
6: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
5: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
6: फोन नंबर 91-61-877-347।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या। ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
5: स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, जिसे लेकर आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका। और ये पहली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। आप सभी सुनना चाहते हैं लूटमार फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, और अमित खन्ना के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हम तक पहुंची है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। आप सुनना चाहते हैं गीत गाता चल फिल्म का गीत आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह के स्वरों में, साथ ही गीत व संगीत है रविंद्र जैन का।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। दिनांक 8 जून दिन सोमवार समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय होगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर

जहां देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376 80 40 90। समय याद रखें, दिनांक 8 जून को शाम 5:30 पर। आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर फरमाइशी कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगली फरमाइश कहां से आई है। दोस्तों, ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और आपके पूरे परिवार ने। आप सभी सुनना चाहते हैं बरसात फिल्म का गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में। साथ ही समीर के लिखे गीत को संगीत से पिरोया है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमारे पास आई है पलारी छत्तीसगढ़ से। दिनेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन की। आप सभी ने फरमाइश की है दिल है तुम्हारा फिल्म का गीत सुनने की, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की। गीत के बोल है समीर।

बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया की। आप सुनना चाहते हैं आओ प्यार करें फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। श्यामराज के लिखे गीत को अपने संगीत से पिरोया है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क।

0: रही है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें आसपास की।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
4: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
3: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
4: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
3: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
5: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
6: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
5: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
6: और साथ में अपना नाम, पता
5: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
6: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
7: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: बातें आसपास की, इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस बेहद खास सफर में। दोस्तों, जब भी हम और आप अयोध्या का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले मन में प्रभु श्री राम और कनक भवन की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जी की इस नगरी में उनके परम प्रिय भाई लक्ष्मण जी के भी कुछ ऐसे पावन स्थल हैं जिनके बिना अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, आज हम आपको ले चल रहे हैं लक्ष्मण मंदिर और सहस्त्रधारा घाट की सैर पर। दोस्तों, अयोध्या में लक्ष्मण मंदिर और सहस्त्रधारा एक ही ऐतिहासिक और अत्यंत पवित्र स्थल का हिस्सा है। ये स्थान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी के ठीक पश्चिम में स्थित है और राम जन्मभूमि यहाँ से मात्र 2.2 किलोमीटर पर स्थित है।

दोस्तों सहस्त्रधारा तीर्थ के तट पर प्राचीन लक्ष्मण मंदिर स्थित है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां लक्ष्मण ने साकेत धाम लौटने से पहले बैठकर ध्यान किया था। सरयू नदी के तट पर स्थित लक्ष्मण मंदिर वो जगह है जहां कभी लक्ष्मण जी का भव्य महल हुआ करता था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो रीवा के महाराज ने इस जगह का जीर्णोद्धार करवाया था और आज यहाँ बेहद खूबसूरत मंदिर है जिसे लक्ष्मण किला के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी शानदार है, यहाँ कदम रखते ही आपको त्रेता युग की भव्यता का एहसास होने लगेगा।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840। आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
1: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: श्रोताओं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना। दिनांक 8 जून दिन सोमवार समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनवथा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376 80 40 90। समय याद रखें, दिनांक 8 जून को शाम 5:30 पर। दोस्तों, बातें आसपास की, ये कार्यक्रम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जहां आकर इंसान श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है और वो है सहस्त्रधारा घाट। सहस्त्रधारा का अर्थ होता है हजारों जलधाराएं। इस स्थान पर सरयू नदी की धारा कई छोटी छोटी नदियों में धाराओं में विभाजित होकर बहती है जो अत्यंत मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। यहां आकर शांत वातावरण मन को

को शांति और सुकून प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहां लक्ष्मण जी ने अपनी मानव लीला समाप्त की थी और वापस अपने शेष नाग अवतार के रूप में समाहित होकर वैकुंठ धाम प्रस्थान किया था। इसलिए ये स्थान उनके त्याग, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।

दोस्तों कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने यहाँ सरयू नदी में जल समाधि ली, तब आकाश से देवताओं ने उन पर हजार धाराओं में पुष्प वर्षा की थी, इसलिए इसका नाम सहस्त्र धारा पड़ा। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु सरयू नदी के इस शांत घाट पर डुबकी लगाते हैं और मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत है। यहाँ साधु संत ध्यान और साधना करते हैं। ये स्थान अयोध्या की भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण और भी अधिक आकर्षक लगता है। यहाँ आने वाले लोग न केवल धार्मिक आस्था से जुड़े होते हैं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी लेते हैं। अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्री लक्ष्मण मंदिर और सहस्त्र धारा के दर्शन अवश्य करते हैं। ये स्थान आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व लोगों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, अंत में कहा जा सकता है कि लक्ष्मण मंदिर सहस्त्र धारा अयोध्या का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राकृतिक स्थल है, जहां भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये स्थान हमें त्याग, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो भाई, अगली बार जब आप अयोध्या आएं तो सिर्फ मुख्य मंदिरों का तक ही ना रुके। सरयू किनारे ठंडी हवा के झोंके के बीच इस सहस्त्र धारा घाट पर बैठिए, लक्ष्मण किले की दिव्यता को महसूस कीजिए और प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के इस सर्वोच्च त्याग की नमन कीजिए।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ बातें आसपास की कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रियंका को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा,
0: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बातें आसपास की। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। मेहमान हैं रामजी भगत।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
6: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले

0: की सरडी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत जो कि सरपंच हैं सरडी ग्राम पंचायत के। भगत जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
0: भगत जी राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
1: मैं तो सरपंच हूँ लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे और मेरे जनपद के अधिकारी जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जसपुर को मिला उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
0: सरपंच जी जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास हमारे गांव में और जंगल है पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है कहीं नहीं फेंकना है और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो शत प्रतिशत सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा जिसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए लगन किए तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर बहुत सारा चुनौती है जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का 2 मीटर का 1 मीटर का उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड का ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब करके उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है बरसात।

0: बनानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
2: सर पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं। हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए, हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
2: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
1: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
2: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
1: मतलब उसके लिए भी अपने कार्योजना
2: तैयार कर रहे हैं।
1: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
2: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी,
2: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां हैं, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
2: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
2: और सप्ते में जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
2: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहे हैं
1: जी,
2: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहे हैं।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
2: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
2: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती है, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
2: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल, मैं स्मार्ट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं स्मार्ट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ, मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
2: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन अच्छा। है मेरा सोमवार मंगल बुध भी, फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घर में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, 3 दिन मेरा काम हो जाता है,
1: लगातार व्यस्त रहते हैं,
2: मतलब हमेशा व्यस्त।

0: रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
1: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गाँव में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को वहाँ आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहाँ हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूरा कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुँचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से उड़िया मतलब पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए, आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है, हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी,
0: चाहे जिससे क्या महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है, जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, और शासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आपने सुना पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। मेहमान थे रामजी भगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे लिए
1: कुछ भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाए और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोले कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देते थे उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कहा आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्यों देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब आइदर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
0: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
1: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान।

0: है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
2: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए।
0: हाँ।
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होता है।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना।
0: हाँ।
1: और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई। तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में, बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में, फिर जब जमीन पर मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में, लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: लटक जाऊं।
1: I'm telling you, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ो।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रहा करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ।
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
2: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
2: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, देखते क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया। है ना,
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचता था कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बताने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगैर ही तो मैंने कहा कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
0: मैंने फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया, और फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी एक छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन
1: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए, मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था,
0: उस पे हम बात करेंगे लेकिन अभी पहले इसको
1: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए, मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो. तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो. ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में. से नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है. नहीं नहीं ये तुमको आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे और जिस तरीके से तुम चलते हो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे. लेकिन मुझे कुछ नहीं पता. फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो. मैं आमिर से मिला, आशुतोष से मिला और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
0: कहानी है
1: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी वियनीज वॉल्स वो हमें चाहिए.
0: बताइए.
1: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे. पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है.
0: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
1: स्कूल्स
0: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
1: एकदम अलग सर,
0: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं.
1: एब्सोल्युटली
0: वो तो आप जानते नहीं थे.
1: एब्सोल्युटली.
0: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए. तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा.
1: जरूर. तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा. तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है. तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है. रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे. तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ. आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी. ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत. It was so sweet, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 years. He says, मैं नहीं करना. मैं बोलूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है. सर क्यों डरे हो, आपको आता है? मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है. ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी. और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरामैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी. ठीक है. आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू'ल बी फाइन. तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा. मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है. हाँ. तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल. तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है. उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी. तो मैंने भर्ती की अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज कोरियोग्राफी में डाली. गाना ARMN का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया. वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट में, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड. ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है. सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं. फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा. अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है और ये क्या बोलते हैं ना ग्रंथ है. अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा. तो अभी मुझे पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक है तो मैं वो बुक को रातों रात

आ गया सब कुछ और मेरे नोट्स लिखने की जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए, मैंने अनिमिता सर को बताया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई और मैं बहुत नर्वस

0: शूट लग गई और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े इतनी बड़ी बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी हाँ। आमिर की और आशुतोष की भी और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म हाँ। फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मोचन ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स हैं, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गया था तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पत्र।

0: लेकर इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉ. संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष यादव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथियों के स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईशा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माए अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बाबी।

0: नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं, कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांवों की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमार प्रणाम स्वीकार करें। अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल गई है आज। मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग क्या भोग में सुरस्वती कहीं ले जा, तब सुनावत है आप सबके
1: सरस्वती मैया की जय।
2: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: बड़ा सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनका घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ ही कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बईये इन्हीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराए गए भैया, कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा, तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुई ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है।

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलियान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
1: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते? भावना तीच असते। सही

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला से छी, मैथिली भाषा है। सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले, हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रण झुंझार शिशाई, अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली

0: में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
1: क्या बात है।
0: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब।
1: वाह वाह।
0: तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना, झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है, भगवती के भाई हैं भैरव ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है। तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपनी मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, हे जटिन।

जट्टा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है और बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक है। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छे जानकारी लोगों से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा, तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है। उसमें देवी महिमा, खासकर नर्मदा जी, इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है। नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर, आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है, लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है, भले ही आपको समझने में कठिनाई हो लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ की आप रहने वाली हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं, महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
2: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएं होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद, मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूं। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूं उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है, एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पे सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवा निहातो कनिया, पनवा के सबर सले लियो रे, पिंजड़े

0: कनिया उड़ उड़ बैठे बाजा जिया तो कनिया है उड़नी के सब रस ले ली जड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब रस ले ली और पिंजड़े वाली मुनिया।
1: थैंक यू विविध भारती।
2: धन्यवाद।
1: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई। एक जोरदार तालियां।
3: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जैन जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
2: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंग की शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोक रंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए विशेष श्रृंखला सरकार की 12 साल।

0: quality of life, the targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता. मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है, जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
0: जी,
1: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता. लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाए तो क्या क्या करेंगे
0: जी.
1: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए
0: जी.
1: तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है. हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है. और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. ये प्रारंभ है लखपति योजना. नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है. और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमईज को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं. और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है. पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे. लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही. और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत से श्रम

0: चाहे वह उच्च शिक्षा हो। उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप। और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नेट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन इन ऑलमोस्ट ऑल अचीवमेंट्स। दे गेट टू आउट नंबर देम इन टोटल एनरोलमेंट, बट दे आर आउट नंबरिंग इन सक्सेस। एंड द स्टेम स्पेशल, विच इज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट वी डोंट लिमिट देम टू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, एंड वुमेन इन बोर्ड्स, दे हैव टू बी देयर। एंड फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, विच आई थिंक इज विल एम्पावर देम मच मोर इन द गिवन टाइम्स, वहां भी सरकार ने प्रयास किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
1: बिल्कुल,
0: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुँच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर।
2: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
0: Yes.
2: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
0: yes.
2: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। जी 98 बिल्कुल 98%। तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है।
2: जी,
0: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
2: जी जी,
0: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%। सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से। सो ओडीएफ फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड विच हैज रियली रिड्यूस्ड फ्रॉम 130 टू 80, विच इज ह्यूज चेंज। नॉट मियरली दिस, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks, and I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, which will surely lead to healthier generations in coming times.
2: And also when yes. women are healthier, and when you know they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
0: yeah,
2: due to the
0: yeah.
2: Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across, as a woman vice chancellor, literally I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
2: Yes.
0: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है, और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी सी आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है।
2: एब्सोल्युटली आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस

0: उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
1: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ। ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है। जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात

0: से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के यू नो कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था, आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी यू नो सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 200,000 से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज ईजियर फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देयर कैन बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills. At times they may be digital skills in coming time. And you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है women led development कब होगा, वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%, और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी, और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से वुमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
2: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज, आई कैन से वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स।

0: टाइमर मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं सो इट रियली डजंट मैटर दे लर्न एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है व्हाई आर वी हियर तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भाव यानी पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई उन तक पहुंचे और जो महिला प्रशासक हैं विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली इन ऑफ यंग वंस दे हैव दिस इन देयर माइंड तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: आदित्य जी आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है जो एक दर्जा है समाज में वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है।
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047 द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स एंटरप्रेन्योर्स फार्मर्स इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी अदिति जी थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग discussion.
0: Thank you.
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी
4: अभी आपने सुना विशेष श्रृंखला भारत सरकार के 12 साल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक रंग।
5: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम RHL गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
7: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
9: Hello.
10: No. Telephone number.
11: My number is
12: 7376804090।
13: लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक जिसमें

0: मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं कालीचरण मिश्रा व साथियों की आवाज में ये नकटा।

कार्यक्रम लोक रंग में अभी आपने सुना कालीचरण मिश्रा व साथियों की आवाज में ये नकटा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं छबिलाल पाल व साथियों की आवाज में ये निर्गुण गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: श्रोताओं, 8 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनोधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376-8040-90। समय याद रखें दिनांक 8 जून 2026 को शाम 5:30 पर। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। आइए अब सुनते हैं सुषमा गुप्ता व सखियों की आवाज में ये देवी गीत।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आपने सुना अवधी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
5: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।

0: हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमसे आप जुड़ने के लिए हमारे नंबर 7376 80 40 90 इस पर कॉल कर सकते हैं। और देखिए, हमारे कॉलर लाइन पर आ चुके हैं, हम इनसे बातें करेंगे। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला से बोल रहे हैं, मौसम तो वहाँ बहुत बढ़िया होगा इस समय।
1: जी, शिमला में तो काफी अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा मौसम है, और इन दिनों लगातार बारिश हुई थी, लेकिन अभी जो है मौसम साफ है।
0: अभी मौसम साफ है और सैलानी खूब आ रहे होंगे वहाँ पे?
1: जी, सैलानी खूब आ रहे हैं और पूरा जो है शिमला का जो है आनंद ले रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट आए और आपकी तरफ से भी आते होंगे यूपी से और सभी मतलब हर राज्य से जो है देश कोने कोने से टूरिस्ट हमारे इधर आ रहे हैं।
0: राकेश जी, आप करते क्या हैं?
1: हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
0: सेब की बागवानी? इस समय सेब में क्या चल रहा है, फल आया है या फूल आया है या पक रहा है?
1: अभी तो सब फूल आया है, अभी फल नहीं आया है, और फल तो हमारे जुलाई में तैयार हो जाएंगे।
0: अच्छा, जुलाई में तैयार होंगे, अभी फूल आ रहे होंगे।
1: हाँ, अभी तो फूल है।
0: और बताइए, गाना कौन सा आज आप सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है दिल है तुम्हारा, और गाने की बोले ओ साहिबा।
0: हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश की है। ओ साहिबा, ओ साहिबा, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: है हमें। जी हाँ, श्रोताओं से हमें बहुत प्यार है और हम अपने श्रोताओं से बातें करते हैं आज इस कार्यक्रम में। देखिए, एक कॉलर लाइन पर आ गए, इनसे हम बातें करेंगे। हेलो जी, नाम बताएं अपना।
1: अशोक कुमार।
0: अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सुहावल
0: सुहावल से बात कर रहे हैं। और बताइए, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया सर।
0: बढ़िया, क्या करते हैं अशोक जी?
1: गर्मी खूब है।
0: हाँ, गर्मी तो खूब है, धूप में निकलने लायक है नहीं आजकल।
1: हाँ, धूप में निकलने वाला है नहीं, इसलिए गाना।
0: कौन सा सुनेंगे गाना?
1: यही जो बता रहा हूँ, धूप में निकला न करो, पूजा पाठ फिल्म का है।
0: धूप में निकला न करो रूप की रानी। सही बात है, रूप की रानी धूप में निकलेंगी तो रंग काला हो ही जाएगा और आपका भी काला हो जाएगा, आप भी मत निकलिएगा। हाँ जी अशोक जी, सबके लिए है, धूप से बचना जरूरी है, क्योंकि जब गर्मी बहुत जरूरी है, ऐसे में जब गर्मियां हो तो दोपहर में तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए।
1: हाँ, ये पजराव धूप में निकल रही है दोपहर में।
0: यही धूप ठंडक में बहुत मजेदार लगती है।
1: हाँ जी,
0: लेकिन गर्मी में
1: गर्मी खूब है।
0: चलिए, गर्मियों का आनंद लीजिए और धूप से गर्मियों से बचते रहिए। ठंडे ठंडे फल खाया करिए, खीरा ककड़ी है ना, तरबूज खरबूज ये सब खूब आया है मार्केट में। चलिए अशोक जी, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके सर।

0: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ हैं धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या और मैं आपका रेडियो दोस्त गणेश सिंह आपके साथ हूं। कार्यक्रम में अगला फोन आ गया है, कॉल आ गई है, देखते हैं कौन है। हेलो।
5: हेलो सर, नमस्ते।
4: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
5: जी हम अनु बोल रहे हैं, मैं नवादा बस्ती से, आपको से मिले हैं हम।
4: अनु जी, ये बताइए, आपसे हमारी बात और भी

0: पहले हुई है, दो तीन बार आपकी कॉल हमने अटेंड किया है।
1: जी हम जी करते रहते हैं बात,
0: करते रहते हैं फोन। और बताइए हाल चाल बढ़िया है सर?
1: हाँ सब बढ़िया, अपना बताइए सर।
0: कौन सी ट्रिक लगाते हैं कि आपका फोन बार बार लग जाता है, ये बताइए श्रोताओं को।
1: जी सर हम कई बार तो लगाते, लगता नहीं है
0: भाई। देखो कई श्रोता शिकायत करते हैं फोन नहीं लगता, और आपका बार बार लगता है।
1: जी हम कीपैड मोबाइल दो रखे, एक से मैसेज सुनते हैं, एक से हम कॉल करते हैं।
0: ये आपने एफएम सुनने के लिए दो मोबाइल रखा है क्या?
1: जी नहीं, एक खराब हो गया था डिस्प्ले, तो उसके हम एफएम सुनते हैं।
0: अच्छा जी, तो मतलब ये इत्तेफाक है।
1: जब आपके कोई लाइन पे बात कर लेता उसके बाद हम कॉल लगाते हैं तब लग जाता है।
0: अच्छा, मतलब श्रोताओं को फिर से बताइए कैसे लगाते हैं जब लग जाता है।
1: जी हम लगाते रहते हैं, हमारा काम यही तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे को तो ब्लेंड है सर।
0: अच्छा जी, चलिए
1: गाना ही सुनते रहते हैं।
0: गाना कौन सा आज आप सुनेंगे अन्नु जी?
1: जी सर हम सुनेंगे काबिल फिल्म का
0: टाइटल सॉन्ग।
1: जी
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या और मैं आपके साथ हूं आपका रेडियो दोस्त गणेश सिंह। कार्यक्रम का अगला कॉल हम अटेंड करेंगे। हेलो जी।
1: जी जी मैं दर्शन नगर जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, दर्शन नगर से बात कर रही हैं। आपकी मोबाइल में आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आ जाएं।
1: अब आई सर,
0: अभी भी कट के आवाज आ रही है। और बताइए क्या करती हैं आप? जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। आप स्पीकर से मोबाइल को हटा करके नॉर्मल करके बात करिए तो आपकी आवाज हमें मिल जाएगी।
1: हाँ सर, आप आई सर।
0: अब पूरी आवाज आ गई, आपने स्पीकर पे डाल रखा था इसीलिए आवाज नहीं आ रही।
1: हाँ हाँ सर, जी जी सर। तो हम आपके हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: अच्छा जी, इस फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: गाने बैठी गाना सामने समझन।
0: अच्छा, समधी समधन का गाना सुनेंगी।
1: जी जी।
0: तो ये गाना आप क्यों पसंद कर रही हैं, समधी समधन वाला?
1: अच्छा लगता है सर।
0: अच्छा अच्छा लगता है। तो अभी अभी समधन बनी आपकी नहीं बनी?
1: छोटे हैं।
0: अच्छा, बच्चे छोटे हैं तो इंतजार कीजिए, समधन बनेंगी बच्चे बड़े होंगे तो। हेलो, लगता है हमारी आवाज कॉलर के पास तक नहीं पहुंच रही है। इनकी पसंद का गीत आइए सुनते हैं कार्यक्रम में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी अयोध्या को फॉलो करें और उस पर हमारे आज के इस कुछ तुमने कहा कार्यक्रम के जो पोस्ट है उस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, सुनें अपनी पसंद के नगमे और हाँ कुछ अपनी बातें भी कहें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है कुछ तुमने कहा। जब आप कुछ कहेंगे तो उसको हम श्रोताओं के बीच में शेयर करेंगे। और ये देखिए, हमने जो पहला कमेंट आज शामिल किया है वो आया है जूही द्विवेदी जी का। आप सुहावल से हैं, आप लिखती हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत शामिल करें। भाई देखिए, कुछ तो लिखा कीजिए आप लोग। एक और संदेश आया है, भेजने वाले हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। एक संदेश आया है अरुण कुमार मालवीय दर्द का, आप बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से भेज रहे हैं और आप कर रहे हैं नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार है, आपकी फरमाइश भी आई है। विजय सुरालकर का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है, मोताला महाराष्ट्र से आपने ये कमेंट बॉक्स में संदेश भेजा है। दिलवार खान का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है और ये लिखते हैं, जिंदगी को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी

चमक आ जाए। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान जी हैं ये, इन्होंने इतना बढ़िया बात कही है। ऐसे ही बातें हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे। हुकुम कर्माकर का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है, बिरड़ी मध्य प्रदेश से आपने ये संदेश भेजा है। इंजीनियर फैसल इमाम का संदेश है, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आप संदेश भेज रहे हैं। नरेंद्र नेताम का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है, बगबुड़वा पथरिया से आपका संदेश आया है। राधेश्याम शर्मा का संदेश प्राप्त हुआ है, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से आप संदेश भेज रहे हैं। गजानन गिली दरियापुर बांबली से आप संदेश भेजते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। एक और श्रोता हमारे हैं महेंद्र मोदी, आपका भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है रामगढ़ कैंट से। और एक और संदेश आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार का। आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार लिख रहे हैं पीएन नवालकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पटेल नगर मालकोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया ने भी हमें संदेश भेजा है, कुछ तुमने कहा नमस्ते ये लिखकर भेज रहे हैं। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आदाब कबूल करने के लिए लिख रहे हैं मोहम्मद यासिन अनजान दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। भाई आपको भी आदाब है। संजय ढींगिया का संदेश प्राप्त हुआ है बागपत उत्तर प्रदेश से। एक और संदेश आया है महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी का, आप सप्रेम नमस्कार भेज रहे हैं, आपको भी नमस्कार है और आपने फरमाइश भी कर रखी है। राजेश कुमार वर्मा का संदेश प्राप्त हुआ है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजनाथ पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। एक और संदेश आया है, भेज रहे हैं पंकज वडोदे, आप नमस्ते लिखते हैं, आपको भी नमस्ते है। राम राम जी लिखते हैं सुरेश गगनीजा जलालाबाद वेस्ट से। एक और संदेश प्राप्त हुआ है रज्जाक मोहम्मद का, आप ये संदेश हमें भेज रहे हैं प्यार भरे नमस्कार के साथ, आपको भी प्यार भरा नमस्कार है। आरजी जी सादर सप्रेम नमस्ते, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से आप भेज रहे हैं नारायण लाल साहू। ओम प्रकाश राय का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप संदेश भेज रहे हैं। लालगिरी गोस्वामी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है और आप फरमाइश कर रहे हैं, आपकी फरमाइश है दीवाना फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ गीत है, समीर का गीत और संगीत है नदीम शवन का। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

और ये देखिए अगला संदेश हमने शामिल किया है उमा सिंह का। आप ये संदेश भेज रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। एक और संदेश प्राप्त हुआ है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम जी का, और आप लिख रहे हैं तेरे इस प्यार का शुक्रिया। अच्छा, ये गाने का बोल है। एक और संदेश आया है कमल श्वाने का। राहुल मनवर हमें संदेश लिखकर भेजे हुए हैं शाहूनगर यतमाल से। मनिर्मा पाल का संदेश हमें प्राप्त हुआ है हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। सुनील पाठक का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में। एक और संदेश प्राप्त हुआ है मशरूर हसन जी का। आप ये संदेश हमें भेज रहे हैं सहारनपुर से। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन का संदेश भी आया हुआ है। सतीश अनीजा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ से। एक और संदेश प्राप्त हुआ है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू का। कंवर कॉलोनी बड़ाह से प्रवीण श्रीमाली का संदेश आया हुआ है। आफताब अंसारी का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। एक और संदेश आया है वेद प्रकाश मिधा का। ये संदेश आप भेज रहे हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। जाकिर मंसूरी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है बाजार रोड मुंगीसापुर से। एक और संदेश टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आया हुआ है, भेज रहे हैं रविंद्र सिंह। और ये संदेश हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं विनोद वंडलेकर रायपुर छत्तीसगढ़ से संदेश भेज रहे हैं। मसरूर नूर अंसारी का संदेश है। धीरज गुप्ता ने हमें संदेश भेजा हुआ है बदायूं से। जसपुर उत्तराखंड से आया है संदेश रियासत हुसैन से देकी का। बीएल धाकड़ का संदेश हमें प्राप्त हुआ है उज्जैन मध्य प्रदेश से। राजेश अकेला का संदेश आया हुआ है टीकमगढ़ से। मोहम्मद इतजार का संदेश आया है भोजपुर तगा सहारनपुर से। एक और संदेश

आया हुआ है राजेश वर्मा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप संदेश भेज रहे हैं। सुभाष चंद्र बजाज का संदेश भी आया हुआ है। एक और संदेश है रश्मि पांडे का, आप राजकोट गुजरात से संदेश भेज रही हैं। रमेश कंबोज का संदेश प्राप्त हुआ है मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से संदेश आया है दातार सिंह शेखावत का। टीडी मल्होत्रा का भी संदेश आया है जो कि चंडीगढ़ से संदेश भेज रहे हैं। स्वरण गिल का संदेश आया है लोहगढ़ ठाकुरावाला से। एक और संदेश प्राप्त हुआ है ओम बगरिया का, आप ये संदेश भेज रहे हैं गांव बांडीवाला फजलका से। आप सभी पसंद करते हैं फिल्म बाजीगर का गीत, तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में जफर गोरखपुरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत, बद किया हुआ ये नगमा।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कुछ तुमने कहा कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त गणेश सिंह आपके साथ कार्यक्रम में। और देखिए अगला संदेश आया है, भेज रहे हैं गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। एक और संदेश आया हुआ है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान का। नभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त जी ने संदेश भेजा है। गोविंद वैष्णव का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। एक और संदेश आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल का। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से संदेश भेज रहे हैं बबलू साहू। एक और संदेश आया हुआ है के आर साहू का, ये संदेश आप भेज रहे हैं भाटापारा से। कुंवर कृपाल सिंह हरिहर गुलाब लोद संदेश भेज रहे हैं। एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है सुदर्शन शाह जी का। नेपा नगर मध्य प्रदेश से आप संदेश भेजते हैं। सुभाष गोद्रा का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। एक और संदेश आया हुआ है उत्तम सिंह जंघेल का, आप आर्यनगर कोहका भिलाई से संदेश भेज रहे हैं। धर्मेंद्र छीपा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है भोपालगढ़ राजस्थान से संदेश आता है आपका। उत्तम कुमार का संदेश है, राजेश जी का संदेश है, विनय मोहन ने संदेश भेजा है, आप ये संदेश भेज रहे हैं हरियाणा से। एक और संदेश प्राप्त हुआ है शंकर लाल जायसवाल का, शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव ने भी संदेश भेजा हुआ।

है अनोखे लाल का संदेश आया है पुराना शहर बरेली से, आप संदेश भेज रहे हैं। प्रवीण शुक्ला का संदेश प्राप्त हुआ है मराठवाड़ा से, संदेश भेज रहे हैं सैयद यूनुस। रामचंद्र मखेजा का संदेश प्राप्त हुआ है। वीरेंद्र भगत ने संदेश हमें भेजा है। संतोष नामदेव और बनवारी राजपाल का संदेश प्राप्त हुआ है। आप सभी

संदेश प्राप्त हुआ है। आप सभी पसंद करते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत, तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में इंदिवर का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये प्यारा सा नगमा।

और ये देखिए कार्यक्रम में अगला संदेश आया हुआ है नंदकिशोर घटे का। आप ये संदेश भेज रहे हैं लाला साहेब करवा से। सुरेश जायसवाल का संदेश गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। मोहम्मद सईद अब्बासी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, बुलंदशहर से आप संदेश भेज रहे हैं। राहुल जी ने संदेश भेजा है हमें कोल्हापुर महाराष्ट्र से। राघव बाघेल का संदेश हमें प्राप्त हुआ है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, आप संदेश भेज रहे हैं। रविंद्र दास का संदेश आया है किशनगंज बिहार से। आर कुमार ने संदेश हमें भेजा है। एक और संदेश आया है उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूनत का। रमेश चौहान ने संदेश भेजा है। रामकुमार रावत का संदेश है। राजकुमार डूडी और सिंगरौल चंदूलाल का संदेश है। दिग्दर्शन गौड़ ने संदेश हमें भेजा है मेरठ कैंट से, आप संदेश भेज रहे हैं। तुलसीदास जी संदेश भेज रहे हैं। मोहम्मद फरमान केपीएस चौहान जी का संदेश है। एक और संदेश आया है देवेंद्र कुमार गुप्ता का और शमसुल कमर राही का संदेश प्राप्त हुआ है। मोहम्मद कलीम अंसारी ने संदेश भेजा है। जबलपुर मध्य प्रदेश से माधो नामदेव का संदेश है। उदय भानपाल का संदेश प्राप्त हुआ है। बीलू चिदलिया का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ है। नरेंद्र शर्मा जैतली का संदेश है। दीपेश वर्मा ने संदेश भेजा है। आप ये संदेश सारगांव छत्तीसगढ़ से भेज रहे हैं। चंद्रकांत साहू का संदेश हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से। राजपाल का संदेश है। अनिल वर्मा ने संदेश भेजा है। शेख मूसा का संदेश प्राप्त हुआ है। फहीम मसूरी ने संदेश भेजा है और एक और संदेश मोहम्मद फकीर पवार का प्राप्त हुआ है हमें लक्कड़ बाजार खंडवा से। संदेश भेजते हैं इसवार मेहर का है संदेश और गुरमीत सिंह मीता का संदेश है। मोहम्मद यासीन इसरार अहमद आशीष बारी का संदेश प्राप्त हुआ है। सुरेश राठौर मुकेश गौतम जी के परमार सतीश शर्मा विनोद रणधीर गुप्ता हरजिंदर छिंदा राजू कुमार अशोक सिंह राजू मिगली अबुल गफ्फार हैं रुपेश सिंगल हैं सपना जी हैं

विजेंद्र के रज्जन हैं, तेज अंसारी हैं, बिट्टू का संदेश है, संतोष भाई का, अनवर अंसारी, दीपक शेख, ज्ञान सिंह, हीरामणि वर्मा और अशोक वर्मा, सुखविंदर सिंह जौड़ा, संदीप कुमार, विनोद, राजेंद्र नाग, बालकरण वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, सर्वेश कुमार प्रजापति, सदानंद मंदूरकर, पंकज जगदीश धाकड़, जी के परमार, नंद सागर तिवारी, सुरेश खन्ना, अंजम खान, फारूक अली खान, मुकेश कश्यप, नितेश, विजेंद्र कुमार, रसीद हुसैन, मुकेश कश्यप, दुर्गेश साहू और विनोद यादव का संदेश प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का गीत, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी की अयोध्या की इंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं दिल कहीं होश कहीं एल्बम का ये गीत, कुमार सानू की आवाज में। गीत है निदा फाजली का, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: और भाई साहब क्या हाल है?
1: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
0: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
1: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: श्रोताओं, दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार शाम 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या से डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376804090। समय याद रखें दिनांक 8 जून 2026 को शाम 5:30 पर। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंदा की डोली एल्बम का गीत। सोनू निगम की आवाज है, नुसरत बद्र का गीत है

अभी आपने सुना कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन EIR ऐप पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रूपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति साना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम

0: है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इजराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में

0: अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना दोपहर समाचार, जिसे हमने अपनी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड, न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा,
2: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: बाल जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी नन्हे श्रोताओं को गीता दीदी का जय हिंद। बच्चों, जिस तरह से वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ने, खेलने, दौड़ने और स्वस्थ रहने की शक्ति भी देता है। इसी महत्वपूर्ण संदेश को समझने और सभी लोगों तक पर्याप्त एवं

0: पौष्टिक भोजन पहुंचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व खाद्य दिवस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि भोजन हमारे जीवन का आधार है। धरती माँ के श्रृंगार से लेकर हमारी थाली तक का सफर अन्न की प्रेरणादायक कहानी है। बच्चों, इस कहानी में किसान का परिश्रम, प्रकृति का आशीर्वाद और हम सभी की जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। आइए, इसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं दीपिका शुक्ला, सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
1: बच्चों, आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ जो हम सभी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, लेकिन जिसकी महत्ता को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आज का हमारा विषय है धरती के श्रृंगार से लेकर आपकी थाली तक का सफर, अन्न की कहानी। बच्चों, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। हमारी थाली में रोटी, चावल, दाल और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। हम उन्हें सहज भाव से खा लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी थाली में पहुंचने से पहले इस अन्न ने कितनी लंबी यात्रा तय की होगी? क्या हमने कभी कल्पना की है कि एक छोटे दाने के पीछे प्रकृति, किसान और समाज के कितने लोगों की मेहनत छुपी होती है? आज मैं आपको अन्न की इसी अद्भुत यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। अन्न की कहानी किसी बाजार, गोदाम या रसोई से नहीं, बल्कि धरती माँ के गोद से शुरू होती है। जब खेतों में हरियाली छा जाती है, जब हवा के झोंकों के साथ फसलें लहराने लगती हैं, तब प्रकृति अपने सुंदर रूप में दिखाई देने लगती है। तब ऐसा लगता है मानो धरती माँ ने स्वयं को श्रृंगारित किया हो। हरे भरे खेत, सुनहरी धूप, पक्षियों की मधुर आवाज और मिट्टी की सुगंध मिलकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। लेकिन यह सौंदर्य अपने आप नहीं आता, इसके पीछे किसान की अथक मेहनत छिपी होती है। वह खेत की जुताई करता है, मिट्टी को तैयार करता है, उसे उपजाऊ बनाता है और फिर उसमें नए जीवन के बीज बोता है। यहीं से शुरू होती है अन्न की कहानी, जो कि शुरू होती है एक छोटे से बीज से। बच्चों, बीज देखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर भविष्य की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। जब किसान बीज को मिट्टी में बोता है, तब वह केवल एक दाना नहीं बो रहा होता, बल्कि वह अपने सपने, अपनी उम्मीदें और अपने परिवार का भविष्य भी मिट्टी को सौंप रहा होता है। बीज मिट्टी के भीतर छिप जाता है, फिर प्रकृति उसका साथ देती है। बारिश की बूंदें उसे जीवन देती हैं, सूर्य की किरणें उसे ऊर्जा प्रदान करती हैं, हवा उसे बढ़ने में सहायता करती है। धीरे धीरे वह अंकुरित होकर धरती की सतह पर आता है और एक नए जीवन का संदेश देता है। वह छोटा सा अंकुर हमें यह सिखाता है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल हों और परिश्रम निरंतर किया जाए, तो छोटी सी शुरुआत भी बड़े परिणाम दे सकती है। बच्चों, यदि अन्य की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पात्र की बात की जाए, तो वह निसंदेह किसान है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं और यह उपाधि उसे यूं ही नहीं मिली। जब हम आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं, तब किसान सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता है। कभी प्रचंड गर्मी, कभी कड़ाके की ठंड और कभी तेज वर्षा, वह हर मौसम में अपने खेतों की देखभाल करता है। वह पौधों को पानी देता है, खर पतवार हटाता है, कीटों से फसल की रक्षा करता है, समय समय पर खाद व उर्वरक डालता है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं उसकी मेहनत को नुकसान पहुंचा देती हैं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओलावृष्टि पूरी फसल को

नष्ट कर देती है। फिर भी किसान हार नहीं मानता। वह अगले मौसम में फिर नई आशा के साथ खेत में उतर जाता है। उसका धैर्य, समर्पण और परिश्रम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बच्चों, समय के साथ बीजों से पौधे बनते हैं तथा बड़े होने लगते हैं। खेतों में हरियाली फैल जाती है। जब हवा चलती है तो पौधे ऐसे झूमते हैं मानो प्रकृति कोई सुंदर नृत्य कर रही हो। यह दृश्य केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रकृति और मानव श्रम के सफल सहयोग का परिणाम है। यदि किसान मेहनत ना करे तो फसल नहीं होगी। यदि प्रकृति सहयोग ना करे तो भी फसल नहीं होगी। अतः अन्न की हर बाली हमें यह संदेश देती है कि सफलता हमेशा सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। बच्चों, जब फसल पूरी तरह पक जाती है तब खेतों का रंग हरे से सुनहरा हो जाता है। सूर्य की किरणें जब इन बालियों पर पड़ती हैं तो पूरा खेत सोने की तरह चमक उठता है। यह वह समय होता है जिसका किसान महीनों से इंतजार कर रहा होता है। कटाई का कार्य शुरू होता है। आज आधुनिक मशीनें इस कार्य में सहायता करती हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर अभी भी लोग हाथों से फसल काटते हैं। कटाई के बाद खेतों में अनाज के ढेर लग जाते हैं। फसल काटने के बाद अन्न की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका एक नया चरण आरंभ हो जाता है। अनाज को ट्रैक्टरों, ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाया जाता है। मंडी में किसानों की उपज खरीदी जाती है। यहाँ गुणवत्ता की जांच होती है। अनाज का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसके बाद उसे गोदाम में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे अलग अलग मीलों में पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक लोग योगदान देते हैं। वाहन चालक, मजदूर, व्यापारी, गोदाम कर्मचारी तथा अनेक अन्य लोग। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमें केवल किसान ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया। गोदामों और मिलों में पहुंचने के बाद अन्न का स्वरूप बदलने लगता है। गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, धान को चावल बनाया जाता है, दाल को साफ करके पैक किया जाता है, मक्का और अन्य अनाजों से विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। आधुनिक तकनीकी और मशीनों की सहायता से अनाज को पैक किया जाता है। इसके बाद अन्न दुकानों और बाजारों तक पहुंचता है, जहां से लोग उसे खरीदकर अपने घर ले आते हैं। बच्चों, अन्न की यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है रसोई। यही वह कच्चे अनाज से भोजन का रूप लेता है। जब घर में भोजन पकता है तो केवल सामग्री ही नहीं पकती, बल्कि उसमें माँ का अपनापन, प्रेम और संस्कार भी शामिल होते हैं। आटे से रोटियाँ बनती हैं, चावल पकते हैं, दाल तैयार होती है, सब्जियाँ बनती है, मसालों की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है और अंततः वही अन्न हमारी थाली में परोसा जाता है। आज के समय में बच्चों और युवाओं को पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता और अन्य जंक फूड बहुत पसंद है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन खाद्य पदार्थों का आधार भी यही अन्न है जो किसान खेतों में उगाता है। पिज्जा का बेस भी गेहूं के आटे से बनता है, बर्गर का बन भी अनाज से तैयार होता है और अधिकांश खाद्य पदार्थों में किसी न किसी रूप में खेतों की उपज का ही प्रयोग होता है। अर्थात चाहे हमारी थाली में साधारण रोटी हो या आधुनिक फास्ट फूड, हर निवाले के पीछे धरती माँ का आशीर्वाद, प्रकृति का सहयोग और किसान का अथक परिश्रम छिपा होता है। इसलिए हमें भोजन के प्रकार से अधिक उसके महत्व को समझना चाहिए और अन्न के प्रत्येक दाने का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, हमारी एक रोटी के पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। हमारे एक निवाले में
सिर्फ भोजन नहीं

0: बल्कि उसमें धरती की उर्वरता, सूरज की ऊर्जा, बारिश का जल, किसान का पसीना, मजदूरों की मेहनत और परिवार का स्नेह होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अन्न को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्माम, अर्थात अन्न ही ईश्वर है। बच्चों, आपको तो पता ही है, आज के आधुनिक युग में पैक्ड फूड जैसे मैगी, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, ब्रेड, केक, कॉर्नफ्लेक्स, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन खाद्य पदार्थों की भी शुरुआत खेतों से ही होती है। इन्हें भी मीलों में अलग अलग अनाज का उपयोग कर मशीनों की सहायता से अलग अलग रूप व स्वाद दिया जाता है। फिर गुणवत्ता की जांच के बाद इन्हें आकर्षक पैकेटों में पैक किया जाता है। फिर इन्हें रेलगाड़ियों व अन्य परिवहन साधनों द्वारा देश के विभिन्न शहरों व गांवों तक पहुंचाया जाता है। फिर हम इन्हें दुकानों, सुपरमार्केटों व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे घरों तक लाते हैं। बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया में भी वैज्ञानिक, इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, पैकिंग कर्मचारी, दुकानदार और अनेक अन्य लोग अपना योगदान देते हैं। अर्थात जो पैक्ड फूड हम खाते हैं, वह भी खेतों में उगे अन्न की ही एक परिवर्तित यात्रा का परिणाम होता है। इसलिए हमें आधुनिक खाद्य पदार्थों का आनंद लेते समय भी उस किसान को याद रखना चाहिए, जिसकी मेहनत के बिना यह सब खाना संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्न की यात्रा केवल खेत से थाली तक ही सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक फैक्ट्री, परिवहन व्यवस्था और बाजारों से होकर गुजरते हुए हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। वास्तव में अन्न का प्रत्येक दाना मानव सभ्यता, विज्ञान, तकनीकी और परिश्रम के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। बच्चों, आज दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भोजन की बर्बादी करना न केवल गलत है, बल्कि मानवता के प्रति अन्याय है। बच्चों, हम अक्सर प्लेट में आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। हमें यह समझना चाहिए, जिस भोजन को हम व्यर्थ कर रहे, उसे उगाने में महीनों की मेहनत लगी है। इसलिए हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। अतः हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
7: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
6: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
7: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
6: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
7: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
6: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
9: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लो।

0: संगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सके जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
0: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: इस विज्ञापन से पहले बच्चों आपने सुना धरती माँ के श्रृंगार से लेकर हमारी थाली तक का सफर। इस विषय पर हमारे नन्हे दोस्तों ने ये वार्ता सुनी थी। वार्ताकार थी दीपिका शुक्ला और हम बच्चों उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में अन्न का सम्मान करना, भोजन की बर्बादी रोकना हम सभी का कर्तव्य है। भोजन और पर्यावरण का संबंध अटूट है बच्चों। पर्यावरण हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, हरे भरे पेड़ और स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में हमारे नन्हे देशों को पर्यावरण प्रहरी बनना चाहिए, यानी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। आप सबको छोटे छोटे कार्य करके पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, जैसे अपने घर के बगीचे में, गमलों में, अन्य स्थानों पर जहां भी आपको स्थान मिले, जगह मिले, पौधे लगाना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे पौधे बड़े होकर आपको फूल फल और दें। अगर आम का वृक्ष है तो फल भी देगा और आपको शीतल छाया भी। पानी और बिजली की बचत करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए, कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, पौधों की सुरक्षा करना। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे बच्चों तो हमारी धरती उजाड़ लगेगी। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे। और यह नारा सबको दें, एक पौधा हम लगाएं धरती माँ को हरा भरा बनाएं, तो पर्यावरण प्रहरी बने। और हमारे नन्हे दोस्तों आज से ही संकल्प ले लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इन्हीं प्रेरणादायक प्रयासों और जन जागरूकता की भावना को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं होने को और ग्राम इसके उपलक्ष्य में ग्राम मुमताज नगर में एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों से बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने अपने विचार, अनुभव और सपनों को साझा किया। आइए सुनते हैं बच्चों से हुई यह बातचीत का यह अंश। प्रस्तुति सरस्वती पाठक की है।
4: अभी हम आ गए हैं अपने नन्हे मन्हे बच्चों के बीच में, जिनके लिए होता है सबसे स्पेशल प्रोग्राम बाल जगत। तो बताइए बच्चों, आप सभी बाल जगत सुनते हैं?
5: यस।
4: कितने बजे आता है?
5: 2:30 बजे दोपहर।
4: दोपहर में 2:30 बजे? तो बाल जगत में क्या क्या सुनते हैं आप?
5: वो पोयम, कहानियाँ, कविताएं और बहुत पढ़ाई सारी संबंधिया।
4: पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है?
5: यस।
4: कैसा लगता है आपको?
5: बहुत अच्छा।
4: और कौन कौन सा प्रोग्राम?
5: और बहुत सारे गाने आते हैं।
4: बाल जगत कितने बजे आता है?
5: 2:30 बजे।
4: किसके लिए आता है बाल जगत प्रोग्राम?
5: हमारे लोग।
4: नाम बताइए अपना।
5: मोहम्मद रिजान।
4: इन्होंने एकदम सही टाइम बता दिया था बाल जगत का कि 2:30 बजे आता है, और उसके बारे में बताया भी था कि क्या क्या आता है। तो एक बार आपका नाम क्या है?
5: मोहम्मद शोएब।
4: मोहम्मद शोएब के लिए तालियां हो जाए जोरदार। और आपके लिए भी एक गिफ्ट बनता है।
6: मोहम्मद शोएब ने बताया कि बाल जगत कार्यक्रम कितने बजे आता है इनसे पूछा गया, तो इन्होंने बता दिया कि बाल जगत कार्यक्रम 2:30 पर आता है रविवार को। बच्चों आप बाकी लोग भी सुनते हैं, तो चलिए आप लोग सुनते हैं, तो चलिए कविता कहानी को सुनाएंगे। सुनाओगे तो
4: मोहम्मद शोएब ने ये भी बताया कि इसमें बाल जगत के अंतर्गत आता क्या क्या है। मैम
6: अरे बाप,
4: ये बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है?
7: मोहम्मद अली हमजा।
4: मोहम्मद अली हमजा, आप क्या सुनाने वाले हैं आज? आप कोई पोयम सुना दीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
7: 5
4: में। तो 5वीं कक्षा में कोई पोयम होगी ना हिंदी की?
7: मैम अभी बुक नहीं मिली है, मैम याद नहीं।
4: अच्छा, अभी बुक मिली नहीं है। आपका नाम क्या है?
7: मोहम्मद जैद।
4: आप क्या सुनाने वाले हैं आज?
7: कविता।
4: कविता, कौन सी कविता सुनाने वाले हैं?
7: सदा यही कहती हूँ माँ।
4: सुनाइए।
7: सदा यही कहती हूँ माँ, घर या सिर्फ हमारा तुम्हारा, माँ मैं कैसे मानूं घर या कितनों का अपना। देखो माँ कैसे चूहे पकड़म पकड़ी खेल रहे, छिपकली को तो देखो कैसे गश्त लगाती है।
4: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। पोयम आपकी बड़ी अच्छी लगी, एक बार तालियां हो जाए जैद के लिए। वेरी गुड। आपका नाम क्या है?
8: मोहम्मद अर्श।
4: मोहम्मद अर्श, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप?
8: क्लास 6।
4: क्या सुनाने वाले हैं आज?
8: पोयम। पर्वत कहता सी सुटा कर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। क्या कहती है उठ उठ गिर तरंग तरंग, बल्लो बल्लो अपने मन में मीठी मीठी पवन। पृथ्वी कहती ढेर न छोड़ो, सागर कहता इतना फैलो, नब कहता है ढक लो सारा संसार।
4: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने सुनाया। और आप बाल जगत सुनते हैं?
8: हमारे घर रेडियो है, लेकिन रेडियो बेकार हो गया मतलब।
4: अच्छा, बेकार हो गया है, तो मोबाइल में नहीं सुनते?
8: मोबाइल में नहीं सुनते।
4: मोबाइल में सुना करिए। प्रसार भारती का न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करवा लीजिए।

0: मम्मी पापा से और उस पे आकाशवाणी अयोध्या ना सर्च करके सुना करिए, ठीक है? आप सुनेंगे आप?
1: यस,
0: प्रॉमिस,
1: प्रॉमिस।
0: चलिए, आपका नाम क्या है?
1: रौनक।
0: रौनक किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: फोर्थ।
0: फोर्थ में आप क्या सुनाने वाले हैं आज?
1: पोयम।
0: कौन सी पोयम?
1: चेतक की, राणा प्रताप के घोड़े की।
0: सुनाइए।
1: रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बना निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक

0: क्या है?
1: अलसिफा फातिमा।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
1: दो।
0: क्या सुनाने वाली हैं?
1: पोयम। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूतलरी था लो फली, मोम फली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा ने मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, एक बिल्ली तानी, सब बच्चों की नानी।
0: बहुत सुंदर, अलसिफा के लिए तालियां हो जाए। आपका नाम क्या है?
2: जाहिरा बानू।
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: सिक्स।
0: क्या सुनाने वाली हैं आज?
2: नाच। आँखों का तारा न मैं मोहम्मद, दिल का उजाला न मैं मोहम्मद, दौलत तो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफा न मैं मोहम्मद, कर लो वजीफा न मैं मोहम्मद, दूल्हा बना है तेरा बनाया, दूल्हा बनाया न मैं मोहम्मद।
0: जायरा के लिए तालियां हो जाए, इन्होंने नाद सुनाया है। आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम गोफिया है।
0: क्या सुनाने वाली हैं आप?
3: पोयम।
0: सुनाइए।
3: ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, कभी किसी से डरे नहीं है, आदर सबका सदा करें हम, हमें देश हो अपना चारा, आपस में हो भाईचारा, सब मिलकर यही गुणगान, जय भारत जय हिंदुस्तान।
0: जोरदार तालियां हो जाए। अब ये बात तो हो गई छोटे छोटे बच्चों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से जो कि बाल जगत कार्यक्रम सुनते हैं।
4: बच्चों अभी आपने मुमताज ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों से बातचीत उनकी सुनी, कितनी प्यारी प्यारी बच्चों ने बातें की, और अब बारी है रोचक जानकारी की। आज आपको लेकर चलने वाली हूँ एक बेहद खूबसूरत, अनोखी, साहसिक और ठंडी ठंडी हवाओं से भरी यात्रा पर बच्चों, और जिसके दोनों तरफ नीला। बच्चों जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो उसका नीचे का हिस्सा एक सुंदर वी आकार जैसा होता है, दिखता है ना, और दोनों तरफ उसके नीला नीला समंदर लहराता है, वह हमारे देश को कितनी खूबसूरती देता है। जी हाँ बच्चों, हम घर बैठे बैठे भारत के उन राज्यों की सैर करेंगे जिनकी सीमाएं विशाल समुद्र को छूती हैं, इन्हें कहते हैं भारत के समुद्र तटीय राज्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की। इसका जो गुजरात का क्षेत्रफल है बच्चों, अगर हम मुख्य भूमि और अपने समुद्र द्वीपों जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला लें तो यह लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर बैठती है, और गुजरात की जो करीब गुजरात का तट है इसके पास करीब 1600 किलोमीटर का लंबा तट है। यहाँ एक काकक्ष का जो रन है जो आपने सुना ही होगा, जहाँ नमक का सफेद रेगिस्तान समंदर से हाथ मिलाता है। और हाँ, यहाँ के मांडवी बीच पर जब शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है समंदर कोई लोरी गा रहा हो। अब गुजरात से थोड़ा नीचे आते हैं, हम पहुँचते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र में। मुंबई का मरीन ड्राइव तो सबने टीवी पर देखा ही होगा, जिसे रात में देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र को हीरो का हार पहना दिया हो। यहाँ के अलीबाग और कुंकड़ के समुद्र अपने लजीज आमों और नारियल के पेड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं बच्चों। गोवा का क्षेत्रफल तो भले ही छोटा है लेकिन इसके समुद्र यानी पूरी जो इसके बीचेस है पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का कलंगुट बीच, बागा, अंजुना जैसे तटों पर सुनहरी रेत और नीले पानी का खेल देखने लायक है। गोवा से आगे बढ़ते ही हम कर्नाटक के तटों पर आ जाते हैं बच्चों। यहाँ ओम बीच बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसका आकार हिंदी के ओम जैसा दिखाई देता है ना, कितनी रोचक बात। समंदर के ठीक पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल दिखाई देते हैं और जो नीचे उसके नज़ारे जो हैं और भी जादुई बना देते हैं। बच्चों केरल की बात करें, केरल का पश्चिमी तट का जो आखिरी राज्य है यहाँ के समुद्र तट का, सिर्फ रेत के लिए नहीं बल्कि बैक वाटर्स के लैगून के लिए भी जाना जाता है। अब भारत के नीचे के हिस्से कन्याकुमारी में मुड़कर ऊपर की तरफ चलेंगे यानी पूर्वी तट की ओर, जहां बंगाल की खाड़ी लहराती है, तमिलनाडु जहां तीन सागर समंदर मिलते हैं, तमिलनाडु का कन्याकुमारी का वह अद्भुत स्थान जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में गले मिलते हैं, और यहां की राजधानी चेन्नई में मरीन बीच है बच्चों, जो भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है, और यहाँ शाम को पतंग उड़ाना और गर्मा गर्म भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने बहुत सारी बातें आप लोगों से की, तो इसी के साथ अब हमारे समय का भी समापन हो रहा है क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, हम आगे आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अगले रविवार तक के लिए बच्चों हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी बच्चों ने सुना अपना कार्यक्रम बाल जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मन चाहे गीत। लीजिए, हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू। लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मनचाही गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफी, उन्हीं की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। मर्जू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
3: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपर कोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्ला अंसारी, आसमा नास अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी

पूनम, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू डब्लू अंसारी और बीबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत राशि रक्षित चितरंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रिसी, नईम इद्रिसी और नदीम इद्रिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिला है। इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया। आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: हद तेरे की, हार हो गई। जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना आयुब?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लचवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी हुजूर।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप, मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं।

0: जी चाचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
1: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चाचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु सैर करेंगे।
2: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
3: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इससे माहौल सजा मिलेगी।
2: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
3: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
2: उफ दादी जान,
3: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी पारहा तखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
2: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये रदा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
3: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
2: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
3: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
2: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
3: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
2: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
3: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
2: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
3: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
2: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
4: जो हुक्म आ जा। आलम बड़ा, गुलाम कादिर हाजिर है।
2: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाई और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में?
5: हुजूर, हुजूर, रहम।
2: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवा कर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहंशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। गोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है

0: यह शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही हैं।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगा कर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मन बहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: कि शह इंशा से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जा बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहां पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलम पनाह, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पनाह के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहा है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में इत्कार रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा।

0: मजदूर के बच्चे नालायक लासब माल कहां छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला, निकल।

show.

0: दरबार में ना जी।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची है।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की।

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत, यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना तले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख कान नाक होंठ।

0: और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
1: इंग्लिश, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ओह, ये उस कमी

0: यह उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होंठ हैं, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं,
1: श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके।

अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश है। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया के शामिल।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लंगारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: कभी छाए।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना।

0: और वो एक शैतान सिंह नाम के मेजर शैतान सिंह जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं रास्ते पे चल रहे थे और चितलकर काका सी रामचंद्र उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
1: जी।
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
1: जी।
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है।
0: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ।
1: हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में। और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं।

0: नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया. प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है. देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना.
1: जी,
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए. गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए.
1: जी,
0: तो माहौल चेंज हो गया. पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया. हाँ. कि ये क्या है. जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है. और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा. लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो.
1: था.
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी. तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी.
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग.
1: जी,
0: पूरा हो गया कार्यक्रम. जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है?
1: अच्छा.
0: ये लिखा किसने है?
1: जी,
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं, वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं. तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण. उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. तो ये बात हो गई. दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया. मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है. हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में हमारे, देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं.
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी.
1: जी,
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में.
1: अच्छा.
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना.
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी.
1: जी, जी.
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ.
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा. पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया. और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए. लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है. ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ. क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात खत्म हो जाती. लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है. राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया. वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी, 2-3 घंटे तक. और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस से इसको सुन रहे हैं.
1: जी,
0: आपका लिखा गीत है, चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी.
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली.
1: जी, जी, जी.
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है.
0: जी. उसके बाद में उनको कहा गया, मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत

0: सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को,
0: इसी गीत को
1: सुनाए।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी।
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी,
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों
1: जी।
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया, आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे, आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े तो ये बात थी। एक तो ऐसा था कि लोग आते थे और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म

0: है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
1: जी।
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
1: जी जी।
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
1: जी।
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर,
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो और वो सुन भी लेते थे, ऐसा माहौल था तब वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे कुछ याद है आपको?
0: हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
1: जी,
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे और गुजराती, मतलब गुजराती भी क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा
0: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
1: जी।
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था?
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: एक नहीं 2-3 रेडियो थे क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण तो में वो देशभक्ति।
0: ये जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
0: जी।
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए।

0: हमें सीख लेना चाहिए था। ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और
1: वो
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी।
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लह लही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा,
0: और यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते,
1: ठुकरा नहीं सकते,
0: भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन ले,
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको, जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आजादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे
1: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से, और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
1: हर एक लाइन सुनिए आप
0: जी।

मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए,

0: तो वो कहते थे कि भी मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलते मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए, तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

FM 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: साथियों नमस्कार, आपकी रेडियो दोस्त समीक्षा मिश्रा लेकर हाजिर है आज का युववाणी कार्यक्रम। आज सबसे पहले करेंगे चर्चा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। ज्ञान विज्ञान भाग में बात होगी दोस्तों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, साथ ही सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत। संस्था भाग में बात होगी OECD की और मित्रों हीट वेव में बात होगी यूथ के लिए विशेष सावधानियों पर। साथ ही होगा गीत संगीत और आपका और मेरा साथ आज की इस शाम को और मधुर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों आज हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी हमारा भोजन, हमारा खाना। लेकिन क्या सिर्फ पेट भर लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं मित्रों, खाना सुरक्षित और सेहतमंद भी होना चाहिए। इस बात को याद दिलाने के लिए हर साल 7 जून यानी आज के दिन ही दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी शुरुआत कब हुई। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद पहली बार 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। जानते हैं दोस्तों इस दिन को मनाने और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का जिम्मा मुख्य रूप से दो बड़ी संस्थाओं के पास है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व यह है दोस्तों कि आम लोगों, किसानों, व्यापारियों और सरकारों को जागरूक करता है कि भोजन उत्पादन से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के सफर में सफाई और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। सुरक्षित भोजन केवल अच्छी सेहत के लिए जरूरी नहीं है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस साल खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। रेडियो के माध्यम से आज हम अपने घरों में काम आने वाले कुछ बेहद आसान तरीकों को दोहराते हैं जिससे हम अपने परिवार को बीमारियों से बचा सके। पहला है खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। कच्ची सब्जियों को पके हुए भोजन से हमेशा अलग रखें ताकि कीटाणु एक से दूसरे में ना जाएं। भोजन को अच्छी तरह और सही तापमान पर पकाएं ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। खाना बनाने के लिए हमेशा साफ और सुरक्षित पानी का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम ना तो भोजन को बर्बाद होने देंगे ना ही असुरक्षित भोजन करेंगे। दोस्तों अब

बारी है संस्था भाग की। संस्था भाग में आज हम बात करेंगे ओईसीडी की। श्रोताओं, ओईसीडी का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों का एक प्रभावशाली मंच है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। मित्रों, इसकी कहानी शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। साल 1948 में यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान के तहत एक संगठन ओईईसी बनाया गया था। बाद में 30 सितंबर 1961 को इसका पुनर्गठन किया गया और इसे एक नया नाम मिला, ओईसीडी। इसका मुख्यालय मित्रों पेरिस में स्थित है और आज दुनिया के 38 देश इसके आधिकारिक सदस्य हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह संगठन करता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ओईसीडी दुनिया भर के देशों के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मित्रों ऐसी नीतियां बनाना जो दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता बनाए रखें, रोजगार के अवसर पैदा करें और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। ओईसीडी टैक्स चोरी को रोकने, पर्यावरण की रक्षा करने, शिक्षा के स्तर को सुधारने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े नियम और मानक तय करने में मदद करता है। यह संगठन दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन करता है और विश्वसनीय आंकड़ों और रिपोर्ट जारी करता है, जिससे देशों को अपनी नीतियां बनाने में आसानी होती है। साथियों, भारत वर्तमान में ओईसीडी का पूर्वकालिक सदस्य नहीं है, लेकिन भारत इसके सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। भारत और ओईसीडी मिलकर आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा और टैक्स सुधारों जैसे बड़े मुद्दों पर लगातार बातचीत और सहयोग करते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि यह संगठन दुनिया के लिए जरूरी क्यों है। ओईसीडी देशों को एक ऐसा मंच देता है जहां वे अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीख सकते हैं। इसका मोटो ही है मित्रों, बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां। संस्था भाग के बाद अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे आवाज दी है रूप कुमार राठौड़ ने, बोल हैं जयदीप साहनी के और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: दोस्तों अभी हमने सुना ये प्यारा सा गीत फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे आवाज दी थी रूप कुमार राठौड़ ने, बोल थे जयदीप साहनी के और संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने। अब मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
0: इस अंतराल के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अब बारी है ज्ञान विज्ञान भाग की। ज्ञान विज्ञान भाग में आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल को कैसे पता चलता है कि फोटो में आपका चेहरा कौन सा है? क्या ये कोई जादू है? नहीं दोस्तों, ये जादू नहीं, आज की दुनिया की सबसे अनोखी तकनीक है, जिसे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। मशीन लर्निंग का सीधा मतलब है दोस्तों, कंप्यूटर को कोई सख्त नियम मत सिखाओ, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा दो, यानी उदाहरण दो। कंप्यूटर उस डेटा को देखकर खुद ब खुद नियम बनाना सीख जाता है। एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपको एक छोटे बच्चे को आम और सेब का अंतर समझाना है। आप उसे 50 आम और 50 सेब दिखाएंगे। बच्चा उनका रंग, आकार और बनावट समझकर खुद ही समझ जाएगा कि आम कैसा होता है और सेब कैसा। ठीक इसी तरह जब हम कंप्यूटर को हजारों बिल्लियां और कुत्तों की तस्वीर दिखाते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग यानी एल्गोरिथम उनके

0: कान, आंख और नाक के पैटर्न को पकड़ लेता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। यह मशीन लर्निंग का ही एक बड़ा और ज्यादा एडवांस रूप है। अगर मशीन लर्निंग एक होशियार छात्र है तो डीप लर्निंग उस छात्र का सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग है। दोस्तों, डीप लर्निंग को इंसानी दिमाग से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। हमारे दिमाग में अरबों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। डीप लर्निंग में भी वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के अंदर एक जाल बनाया है जिसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। जानते हैं दोस्तों, इन दोनों में क्या फर्क होता है? मशीन लर्निंग की शुरुआत में इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीप लर्निंग को किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप और हम हर रोज अनजाने में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई देखी हुई मूवी जैसी और भी मूवीज रिकमेंड हो जाती हैं। ट्रांसलेटर ऐप्स पर हिंदी में बोलते ही अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाता है। AI आपकी आवाज पहचान लेता है, या बिना ड्राइवर की कारें सड़क पर खुद ब खुद चल रही हैं। ये सब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का ही कमाल है। मित्रों, आज के समय में डाटा ही नया सोना है। हर सेकंड इंटरनेट पर इतना डाटा आ रहा है कि कोई उसे अकेला नहीं समझ सकता। यहीं पर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हमारे मददगार बन रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बीमारियों को वक्त से पहले पकड़ना और मौसम का सटीक अनुमान लगाने में भी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की मदद कर रहे हैं। तो अगली बार दोस्तों, आपका फोन आपके चेहरे को अनलॉक हो जाए तो समझ जाइएगा ये जादू नहीं है, बल्कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कमाल है। दोस्तों, अब सुन लेते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत।
1: साथियों, चलिए आज चलते हैं स्टूडियो के बाहर और जानते हैं हमारे युवा साथियों से उनकी आकाशवाणी रेडियो से जुड़ी यादें और जानते हैं उनके विचार, क्या सीखते हैं रेडियो से, क्या जानकारियां मिलती हैं, उनकी बातें उनके अंदाज में सुनते हैं।
2: हेलो मैम
1: जी, आपका नाम?
2: जी, मेरा नाम अजय कुमार
1: जी। क्या आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं?
2: जी मैम, मैं रेडियो को पिछले 10 सालों से सुन रहा हूँ। मेरा रेडियो के साथ बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे दादा जी और मेरे बड़े भाई, जिससे मुझे सीख मिली कि रेडियो सुनना चाहिए। और मैं बचपन में मेरी सबसे फेवरेट चीज़ था सुबह का 7 बजे का जो समाचार आता है। उसके बाद दोपहर 2 बजे जब मैं पढ़ के आता था तो मेरी सबसे अच्छी थी फौजी भाई वाली कार्यक्रम जो होती थी, उसको मैं सुनना पसंद करता। और शाम को दादाजी के साथ मैं सुनता था खेती बाड़ी किसानी के लिए, जो कि मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में हमारे युवा पीढ़ी, हमारे युवा साथी जो हैं, वो फोन ज्यादा देखते हैं और रेडियो कम सुनते हैं, क्या आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि मोबाइल स्क्रीन को नुकसान भी होता है, रील स्क्रॉल करते हैं जिससे हमारे ब्रेन रोट। युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, मोबाइल को कम यूज करें। और अगर रेडियो आप सुनते थे, रेडियो से आप चाहे ज्ञान से सुबह के समाचार हो जिसमें अच्छी चीजें बताई जाती हैं। आजकल जैसे मोबाइल फेक न्यूज आती है, लोग फेक न्यूज सुनते हैं तो उससे हमें जानकारी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन जो रेडियो पे आएगा वो एक रिलायबल न्यूज होता है जो कि हमारे लिए अच्छी है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। थैंक यू।
3: रहने वाला हूँ, मेरा रेडियो से बचपन से ही नाता है। मैं रेडियो प्रोग्राम और टेलीविजन दोनों में कंटेंट में देखता हूँ। रेडियो से ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरा आई कॉन्टेक्ट भी बचा रह जाता है और हेयरिंग प्रॉब्लम भी नहीं होता। इसके साथ साथ 2-3 काम भी एक साथ कर सकता हूँ, रेडियो भी सुनता रहता हूँ, जिससे मेरा टाइम काफ़ी बचत निकल जाता है। मैं स्टडी भी करता हूँ, अभी टाइम निकाल करके कहीं ना कहीं से टाइम एडजस्ट करके मैं रेडियो का प्रोग्राम डेली का डेली सुन रहता हूँ। शाम का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, या दोपहर में भी मॉर्निंग का जो प्रोग्राम आता है उसको भी मैं सुनता हूँ।

0: जिसमें से मेरा फेवरेट है हेलो प्रोग्राम जो शाम को आता है उसको मैं भी डेली सुनता हूँ, जिसमें मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी अगर आगे सुनना चाहता है जो जेंजी जनरेशन के लोग हैं वो रेडियो से थोड़ा दूरी बना के अपना टेलीविजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर के प्रोग्राम की जानकारी के लिए अगर सुनना चाहते हैं तो घंटी चीज़ें आपको रेडियो पर मिल जाएंगी, जिसमें गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। और टेलीविजन में फेक चीज़ें फेक आईडी के थ्रू आती जाती रहती हैं, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस भी होती है, लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर होते उससे चले जाते हैं। और रेडियो में कनेक्टिविटी लोगों के एक दूसरे से बनती रहती है, लगातार बनी रही है, जो कि आज के युवा को इस ओर अग्रसर होना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपका नाम?
2: मेरा नाम संतोष वर्मा है
1: जी। क्या आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं?
2: जी मैम, बहुत ज्यादा
1: जी। रेडियो से जुड़ी कोई यादें आप ही हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगे?
2: जी मैम, हमारी रेडियो से जुड़ी बहुत पुरानी यादें हैं। हम काफी दिन से अपने बाप दादा से मतलब सुनते आ रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठकर। एक चैनल है मतलब कुछ तुमने कहा, वो हम काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं, 5-6 साल से। हमारे पिताजी सुनते हैं, उन्हीं के साथ मतलब विद फैमिली बैठकर सुनते हैं
1: जी। तो क्या हमारे युवा साथी को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आज के टाइम में लोग रेडियो कम सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: जी मैम, हम बिल्कुल मतलब युवाओं को, आज के युवाओं को हम संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो आज की युवा है वो मोबाइल की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट है, और मोबाइल से अट्रैक्ट या जुड़े रहने से मतलब सब देख रहे हैं या अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से मतलब इतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा साधन था कि जिससे हम मतलब मैम की फैमिली के साथ बैठकर आराम से सुन सकते थे और सबके हम कनेक्ट भी रहते थे। तो मोबाइल एक ऐसी है कि मतलब ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने फैमिली से दोस्तों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, और रेडियो हम अपने फैमिली से जुड़कर साथ में बैठकर मतलब आराम से सुन सकते हैं। तो युवाओं को हम ये कहेंगे कि मतलब मोबाइल को छोड़कर मतलब रेडियो से थोड़ा जुड़े।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष।
3: हेलो मैम, मेरा नाम आलोक है, मैं अयोध्या में अयोध्या का रहने वाला हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से रेडियो सुनता हूँ। मेरे इवन मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर भी इसको सुना करते थे, और जैसे कि एक मेरा फेवरेट प्रोग्राम उस पर आता है फरमाइशें, उस पर हम काफ़ी टाइम में अक्सर मैं उस पर गाने सुनता हूँ, और इस प्रोग्राम में नए पुराने गीत सुनने को मिलते हैं, और जैसे कि लोग जैसा लोग फरमाइश करते हैं। और रेडियो का यूज़ हमारे लाइफ में बहुत मतलब टाइम को हमारे वेस्ट नहीं करता है, जैसे कि हम रील्स वगैरह देखते हैं उस पर स्ट्रोलिंग करते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, बट रेडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर हमें हमारा इंजॉय एंटरटेनमेंट भी होता है और साथ में हमारा टाइम भी हम उसको यूज़ भी कर पाते हैं और चीज़ों में।
1: ये थे हमारे युवा साथियों के विचार, उनकी रेडियो के साथ जुड़ी यादें।
4: दोस्तों अभी हमने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत। बाहर सूरज देवता पूरे गुस्से में है, पारा 40 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हमारे कूल और हमेशा एक्टिव रहने वाले यूथ यानी युवाओं के लिए हीट वेव में जानते हैं यूथ के लिए कुछ विशेष सावधानियां। अक्सर हम नौजवान सोचते हैं, अरे हम तो फिट हैं, हमें धूप से क्या होगा, लेकिन दोस्तों यह हीट वेव लू किसी को नहीं बख्शती। कॉलेज जाना हो, ऑफिस की भाग दौड़ हो, या शाम को दोस्तों के साथ घूमना, इस जानलेवा गर्मी में आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है। आइए जानते हैं युवाओं के लिए कुछ कूल टिप्स। सबसे पहला है कि प्यास लगने का इंतजार ना करें। दोस्तों अपने साथ हमेशा पानी की बोतल रखें, सिर्फ सादा पानी ही नहीं बल्कि ORS, नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी पीते रहें। कैफीन और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाएं। वर्कआउट का समय बदलें। अगर आप जिम जाते हैं या आउटडोर रनिंग करते हैं तो दोपहर या कड़कती धूप में ऐसा करने की गलती बिल्कुल ना करें। अपने वर्कआउट को सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद ही शेड्यूल करें। इस मौसम में टाइट और डार्क कपड़े ना पहने, ढीले हल्के रंग और सूती कपड़े पहने। बाहर निकलते वक्त सनग्लासेस,

0: और कैप पहनना ना भूलें। घर से निकलने के 20 मिनट पहले दोस्तों कम से कम 30 SPF या उससे ज्यादा की सनस्क्रीन लगाएं। इससे आपकी स्किन झुलसने और सनबर्न से बचेगी। दोपहर के वक्त पिज्जा, समोसा या ज्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसी चीज खाएं, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। एक बार टिप्स और दोहरा लेते हैं। पहला है, प्यास लगने का इंतजार ना करें और हमेशा पानी की बोतल रखें। वर्कआउट का समय बदलकर सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद शेड्यूल करें। टाइट और डार्क कपड़ों की जगह हल्के रंग, ढीले ढीले और सूती कपड़े पहनें। SPF 30 या उससे ज्यादा की सनस्क्रीन लगाएं, सनग्लासेस और कैप पहनें और दोपहर के वक्त हल्का खाना खाएं, जैसे तरबूज और खरबूजा। साथियों, इस हीट वेव में खुद का ख्याल रखें, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं। दोस्तों कहते हैं, चरित्र वृक्षवत है और यश उसकी छायावत। तो यदि यश की कामना है तो चरित्र की समीक्षा करना आवश्यक है। इसी विचार के साथ देखते ही देखते हम आ गए हैं आज के युववाणी कार्यक्रम के अंत में। कल का कार्यक्रम भी होगा बेहद खास। कल होगी चर्चा विश्व महासागर दिवस की। करियर गाइडेंस में सुनेंगे डॉक्टर रमेश कुमार से जीनत की वार्ता, करियर के विविध आयाम विषय पर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर सुनेंगे युवा साथियों से दिशा पांडे की बातचीत। साथ ही होगा रोजगार समाचार भाग, जिसमें हम रूबरू होंगे इस हफ्ते के मुख्य रोजगार समाचारों से। और हीट वेव में बात करेंगे संतुलित खान पान विषय पर। आज का आपका और मेरा साथ यहीं तक था मित्रों। आपको हमारा युववाणी कार्यक्रम कैसा लगता है, ये आप हमें yuvvani@gmail.com पर मेल करके या 8303219911 पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। मैसेज में कैपिटल लेटर में AKB लिखना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें। नमस्कार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
4: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
3: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
4: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
3: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
4: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
3: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे आथर जैसा न कोई।
3: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं बब्बन निषाद और साथियों की आवाज में ये

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम।

हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए, #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: आपकी बात कार्यक्रम में
1: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
1: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
2: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
1: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
2: 830-321-9911 पर भेज दें।
3: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
4: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
3: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
4: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
3: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
4: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
3: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
5: कार्यक्रम लोक संगीत में आइए, अब सुनते हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
6: कर जमी के पढ़ाई हमार ललना लिया या।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दिग्विजय नाथ सिंह और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
1: अरे बड़ा दुख हो।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
2: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM 101.9 MHz प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पल बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय में करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod.

आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है वीजू शाह का, आवाज मोहम्मद अजीज की, फिल्म का नाम है विश्वात्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी।

0: कोचीनगरे दिवंगतः तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारम्भे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96.1 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्र जगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृत्त कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु संपूर्णे देशे तीव्र वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तर मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तर पश्चिम भारते, मध्य भारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगु देशम पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षेण एन चंद्रबाबू नायडू वर्येण आगामी जून मासस्य 18 दिनांके राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये संघर्षस्य 100 दिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इजराइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युव कार्याणां क्रीडा मंत्री डॉक्टर मानसुख मांडविया अद्य प्रातः काले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरे सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिका यानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतदभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलन रूपं धारयति। अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तं सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्य सुरक्षायाः अधिकार रूपेण तथा सामूहिक दायित्व रूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तं अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमं आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचंडीगढ़ नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीय दलेन अफगानिस्तान दलस्य सम्मुखे 8 क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 64.5 शत धावनांकान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके

0: वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अरुण कुमार कोरी और साथियों की आवाज में ये लोग की
2: चली गोरिया खेतवा की ओरिया अरे कहनावा पे हालावा उठाए के अरे कहनावा पे हालावा।

उठाई के अरे कनावा पे हलावा।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: और अब आइए सुनते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: पंचों जय हिंद। पंचों हम यानी सरजू भैया और लेके कार्यक्रम आए गए हैं कृषि जगत और आज के चर्चा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और साथ ही साथ भेंट वार्ता भी रहे कृषकों हेतु केसीसी और फसल बीमा की योजनाएं और वार्ताकार हैं श्री गणेश शंकर यादव जो उनकी अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या से हैं और इनसे बतियाना पड़े राम प्रकाश पांडे भैया। पंचो लोकगीत और मौसम का हालचाल तो बताओ जी लेकिन पंचो अगर बात की जाए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का तो आज 7 जून का हर साल मनाया जाता है और एक मनावे का उद्देश्य यही रहता है कि अपने सबका साफ स्वच्छ भोजन बराबर मिला करें वका रोग जनित माने रोग रहित रहा है बिल्कुल सुरक्षित रहा है और हर साल एक मनाया का उद्देश्य यही रहता है कि अपन सब पंच भैया ऐसे जागरूक रहें कि अपने सबका साफ सफाई से माने जो भोजन करेगा साफ सफाई से अगले कहाँ मैंने प्रेरणा भी देखवाए कि हाँ साफ सफाई भोजन करा जाए माने हर मेल से देखा जाए तो बीमारी से बचे बदे एक उद्देश्य है और हर साल एक कौन थीम भी रहा है यानी वैसा ही आज के थीम है बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन यह का उद्देश्य यह रहा है खाद्य जो बीमारी है उसे बचे पर ठोस आंकड़ा का समझे और सुरक्षित खाद्य प्रणाली की ताई प्रभावी समाधान लागू करे पर जोर दिया था। यही का संचालन संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य और कृषि संगठन के जरिए संयुक्त रूप से की जाता है। यही दिन से यही बात का याद दिलावा जाता है कि खेत माँ उत्पादन से लेके हमारे थाली तक खाद्य श्रृंखला से हर चरण में सुरक्षा का समय समूह का जिम्मेदारी आ है। कहा है मतलब पंचो दूषित भोजन और पानी से होए वाले स्वास्थ्य खतरा से के प्रति पंचन का है जागरूकता फैलावे जाए जैसे कि जो है एक चपेट में कि वो पंच ना आवे पावे। पंचो दूषित भोजन खाए से दुनिया भर में लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह दिन लोगन का सुरक्षित और पौष्टिक भोजन लिए बदे जागरूकता फैलाने के ताई जनमा तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और तरह तरह के बीमारी से बचा जाए और बचाव के ताई जन भी प्रेरित किए जाते हैं। यह मेल से पंचों जो बटे यह का उद्देश्य यही रहा था कि अपने सबका साफ स्वच्छ जो भोजन मिला करें और कौन मेल से अपने सबका रोग बीमारी से न बचा जाए माने लागे न पावे और माने धन हानि न हो पावे। बोला पंचो एक साथ साथ जो भेंट वार्ता बताया है कृषकों हेतु केसीसी और फसल बीमा की योजनाएं यानी जो वार्ताकार हैं अपने श्री गणेश शंकर यादव और अग्रणी बैंक प्रबंधक अयोध्या जनपद से हैं और इनसे बताया अपने राम प्रकाश पांडे तो ई भेंट वार्ता कहा है चलो सुना जाए और ऐसे केसीसी लोन से कितना लाभ अपने सब पंच भैया कहा है कौन मेल से लाभ ले सकी थी या राम प्रकाश पांडे भैया कितना बढ़िया बतलाना है चलो अपने सभी सुना जाए।
3: पंचो देखा अपने सब भाई कौनो काम करी थी ना तो हमें पैसा का जरूरत रहा थे कैसे मैंने कहा ना बिना पैसा का हो भैया हर काम में मैंने ये पूछा ना तुम्हार औकात कितनी है अंदाजे लागत है तो ऐसे में कुछ बात करते ही अपने बीचे में है आज अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या से श्री गणेश शंकर यादव भैया। तो सबसे पहले तो यादव भैया आपका मेरी पंचायती में स्वागत है। अब आपसे हम जानना चाहिए थी ना केसीसी जैसे पहले पंच भैया का बनवा का है या खास करके फसल बीमा योजना के लाभ लिए का तो हम अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या का मुख्य भूमिका निभाव दिया है।
4: जो भी सरकारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन जनपद में होता है
3: जी
4: और इसमें हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जैसे खरीफ की फसल का समय अभी आ गया है उसकी बुआई जो है आप लोग करने वाले हैं निकट भविष्य में तो उसमें जो आपको धन की आवश्यकता होगी उसके लिए आप केसीसी का ऋण कैसे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप अच्छी बुआई कर सकें और अपनी फसल जो है अच्छी तरीके से वृद्धि करके और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें।
3: बिल्कुल कैसे कैसे कहते पंच भैया ये आप बताओ।
4: पहले ये बताना चाहेंगे कि विभिन्न फसलों के लिए केसीसी बैंक से ऋण देने का प्रावधान है जिसमें धान मक्का उर्द मूंग अरहर तोरिया गेहूं जौ चना मटर मसूर गन्ना आलू मिर्चा टमाटर ये सब फसलों के लिए केसीसी दी जाती है।
3: अच्छा
4: इसमें जो है हर साल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक होती है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि प्रति हेक्टेयर किस फसल पे कितना केसीसी बैंक निर्गत करेगी। तो खुशी की बात ये है कि पिछले

0: वर्ष जो धान की खेती के लिए 70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए वित्तमान निर्धारित हुआ था
1: जी,
0: कि एक हेक्टेयर के धान की खेती के लिए 70,000 रुपए की केसीसी बनेगी, वो बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। इसी प्रकार आलू की खेती का बढ़ा करके 1,75,000 कर दिया गया है, जो पहले 1,65,000 था। इसी तरीके से मटर का जो है वो 34,000 से बढ़ा के 42,000 कर दिया गया है। सरसों का जो है 39,000 से 45,000 कर दिया गया है। तो इसी तरीके से मशरूम का नहीं था, मशरूम के लिए भी वित्तमान निर्धारित कर दिया गया है, जो कि 8,10,000 रुपये है।
1: अच्छा, तो ये तो हो गया कि एक रीतम निर्धारित है
0: जी।
1: पंच भैया का अपन जाए और वह कहागा ना कि जोन किसान के क्रेडिट हुए वही हिसाब से उनका पैसा मिलेगा।
0: हाँ, जैसी जो कितनी क्षेत्र पे आप बुआई करते हैं और किस फसल की बुआई करते हैं, उस फसल के अनुसार जो आपके खसरे में लिखित होता है
1: जी,
0: उसके अनुसार बैंक निर्धारित करती है कि आपका कितना केसीसी बनेगा और उतना आपको दिया जाता है।
1: बिल्कुल, ये करी था पंच भैया का काव करे पड़ते, कैसे बैंक से जाए जुड़े, का कागज लेके जाए, का सावधानी बरते।
0: इसके लिए आपको अपना खसरा खतौनी और आपका आधार कार्ड जो होता है वो लेकर के बैंक से संपर्क करना है। बैंक जो है प्राथमिक तौर पर आपके जो है खेती किसानी का रिकॉर्ड है उसको वो वकील के माध्यम से वो निकाल लेते हैं कि पहले से कोई लोन तो उस पे नहीं चल रहा है, और उसके अनुसार फिर जो है वो आपकी फसल क्या बोते हैं उसके अनुसार आपका वो निर्धारित करके केसीसी निर्गत करते हैं। इसमें किसान भाई को ये भी बताना चाहते हैं कि जिनकी केसीसी पहले से चल रही हो वो भी अपनी केसीसी का समय पर नवीनीकरण करा करके और बढ़े हुए वित्तमान का लाभ ले सकते हैं।
1: मतलब का नवीनीकरण के पैसा जमा करके दोबारा ले लिए।
0: हाँ, नवीनीकरण का मतलब ये जो भी लोन अभी चल रहा है उस लोन को आप वापस कर दीजिए और उसके बाद फिर नया लोन आपको नए वर्ष के लिए फसल के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यह ऋण जो होता है केसीसी वो सिर्फ एक वर्ष के लिए होता है
1: जी।
0: 5 साल के लिए केसीसी निर्धारित की जाती है जिसका लगातार 5 साल तक आपको नवीनीकरण कराना होता है। 5 साल पूरे हो जाने के बाद फिर आपका नया केसीसी बनता है, नए वित्तमान के अनुसार बनता है, जैसा वित्तमान मैंने आपको विभिन्न फसलों के लिए भी बताया है।
1: बिल्कुल, एक बात सही कह दिन बात केसीसी के करते ही, तो केसीसी पंच भैया पशुओं पर तो पालत है या पर सब पर बहुत तो बन जाते।
0: हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने की
1: जी।
0: पशुपालन के लिए और मछली पालन के लिए भी केसीसी का ऋण होता है, और का बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे जनपद में जो है वो 2 पशु के लिए अभी 1,60,000 एक वर्ष के लिए केसीसी निर्धारित हो गई है इस वित्तमान में।
1: भैंस की तरह गाय भैंस की तरह दोनों तरह
0: भैंस और गाय दोनों के लिए ये।
1: अच्छा,
0: हाँ, 2 पशु के लिए 1,60,000, इसी तरीके से 10 पशु के लिए 8,00,000 प्रतिवर्ष के लिए केसीसी आपको मिल सकती है।
1: बिल्कुल, यदि पंच भैया अगर करते हैं पशुपालन तो वही ना सोचे केसीसी ना बने, वही वो लगाए के वही पे ना पशुओं के की कितना इनके लागत होती है और वही हिसाब से उनके क्रेडिट तय करके केसीसी बना दीजिए।
0: हाँ, ये केसीसी पशुओं को चारा खिलाने के लिए है, ना कि नए पशु खरीदने के लिए है। नए पशु खरीदने के लिए अलग से कृषि ऋण होता है, उसका अलग से निर्धारण होता है। ये सिर्फ चारा खिलाने के लिए, अगर आपके पास 2 पशु हैं तो 1,60,000 रुपए आपको लोन मिलेगा, जो वर्ष भर चारा खिलाने के लिए पशुओं को दिया जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे खेतिया में वो एक केसीसी मिलती है।
0: हाँ,
1: कि नहीं ना कि खेत खरीद एक मिलती है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, जोन बोआई वही साधन रहा, वह खवाओ यही साधन है। सरकार के मनसा एकदम स्पष्ट है। अब दैया संजोग अगर मान लिया कि कहियो तो है पाला परा कोहरा परा या बरसात हो गए बहुत तेज आंधी चलिए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ है वो कह पंच भैया लाभ कैसे पा सकते, वो का करा भाई यो के बारे में बता। कैसे पंच जनते ना सोचा हम केसीसी ले लिया अब तो हमारा बीमा होगा, ऐसा ना है ना, कैसे है ये बताओ आप।
0: हाँ, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा एक बहुत अच्छा बीमा है, जैसा कि अभी बताया है भाई साहब ने कि इसमें अगर बाढ़ सूखा जल भराव या आकाशीय बिजली हो गई या ओलावृष्टि हो गई या बेमौसम बारिश हो गई और आपका नुकसान हो गया फसल का
1: जी,
0: तो उसकी भरपाई उसकी क्षतिपूर्ति फसल बीमा योजना के तहत की जाती है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी केसीसी हो रखी है बैंक उसका स्वतः का बीमा करता है
1: जी।
0: उसका निर्धारण प्रतिवर्ष जो है भारत सरकार के माध्यम से उसका निर्धारण होता है कि 1 हेक्टेयर पर कितना बीमा की धनराशि जो है वो ली जाएगी
1: है?
0: उसका प्रीमियम कितना होगा जो आपके खाते से कट के जमा होगा
1: है?
0: और इस प्रकार का कोई भी नुकसान होने पर स्थानीय सरकार यानी राज्य सरकार उसका निर्धारण करती है और वो आपको क्षतिपूर्ति मिलती है। बताना चाहेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में रवि और खरीफ दोनों फसलों को मिलाकर अब तक किसानों को 27,00,000 की क्षतिपूर्ति हो चुकी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहेंगे कि ये बीमा जो है वो आपकी फसल की बुआई से

0: लेकर के कटाई के 14 दिन बाद प्रभावी होता है, यानी कि बुआई से शुरू हो जाता है।
1: 14 दिन में काटे तो लाग घरे में धाइन ले।
0: हाँ, वो काटने के 14 दिन बाद तक जो है वो प्रभावी होता है। मान लीजिए अब अपनी फसल घर नहीं ला पाए, काटने के बाद खेत में कोई नुकसान हो गया, तो वो भी वो बीमा से कवर है। बस एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब आपको नुकसान होता है तो आपको 72 घंटे के अंदर एक नंबर है 14

0: एक नंबर है 1444-7, उस पे फोन करके आपको जानकारी देनी होती है,
1: यानी 144-47।
0: हाँ, 144-47
1: 47 बिल्कुल। पंच भैया का भी याद हो गए, ये लिए दोबारा नाम लिया है कि पंच भैया का 1444-7 या 144-47 जो भी याद कर पाओ, या 1444-4-4-7 यह पर पंच भैया का तुरंत सूचना दिए का 72 घंटा के अंदर। कहे जब नुकसान होता तो ऐसे आदमी दिमाग को कम ही नहीं करत है कि नहीं, यह लिए पंच भैया का वैसा ही 3 नंबर नोट कर लिए का कि 1444-7 पर उन्हें फोन लगाए के बतावे का है।
0: इसके अतिरिक्त एक और चीज बताना चाहेंगे,
1: बताओ
0: कि इसके अतिरिक्त विभाग बड़ी जो है प्राकृतिक आपदा होने पर स्वयं से भी जो है उसका सर्वे कराता
1: है। सामूहिक हो जाता है,
0: वो सामूहिक आपको उसका लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज होती है
1: जी,
0: कि मान लीजिए कि फसल कम हो रही, उत्पादन फसल का कम हो रहा है, तो अपर सांख्यिकीय अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसीलदार और लेखपाल के जरिए जो है वो एक क्रॉप कटिंग का बना हुआ है प्रोसीजर। उस क्रॉप कटिंग में देखा जाता है कि जो आपका उत्पादन हुआ है वो स्थानीय मानक के अनुरूप है कि नहीं। अगर वो उत्पादन स्थानीय मानक से कम होता है तो भी उसमें आपको क्षतिपूर्ति का लाभ।
1: वाह भाई, तो बढ़िया है। क्या मतलब कि तुहार कम भवा तो तुम्हें बराबर पैसा मिले चाहिए और वही बीमा के लाभ तब तू का मिले। और हाँ, और का और हाथ है,
0: और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान भाई हैं, वो इस वर्ष फसल नहीं बो रहे हैं या कोई और कारण है जिसके कारण वो फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते, फसल बीमा नहीं कराना चाहते, तो उनको बैंक की शाखा में जाकर जहां उनका केसीसी ऋण चल रहा है एक एप्लीकेशन फॉर्म वहां मिलता है, वो भर के देना होगा कि भाई हमको बीमा ये नहीं कराना है। और उसमें फिर बैंक जो है एक प्रक्रिया करती है ऑनलाइन, और आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, आपको वो ओटीपी बताना होता है। इसको ऑप्ट आउट बोलते हैं। ऑप्ट आउट हो जाने पर ये होता है कि भाई हमें फसल बीमा नहीं कराना है, कारण कुछ भी हो सकता है आपका। मान लीजिए आपने फसल नहीं बोई है इस साल या और आप उसको कवर नहीं कराना चाहते हैं, तो ये आपको कराना पड़ेगा। इस स्थिति में आपके खाते से कोई भी बीमा का प्रीमियम नहीं कटेगा।
1: बिल्कुल।
0: अन्यथा जो है बैंकों को ये निर्देश है कि बैंक के हर केसीसी खाते में बीमा के प्रीमियम की धनराशि काट करके और उसको बीमा कंपनी को भेजेंगे, जिससे सारा का सारा जो है हमारा कृषि आच्छादित क्षेत्र जो है वो बीमित रहे।
1: बिल्कुल। तो ये तरीके से चलत चलत जोन पंच भैया आपका रेडियो सुनता, उनसे आप का कहा जाइए?
0: उनसे बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो बड़ी संख्या में आप सरकारी योजना का लाभ लेते हुए अपनी केसीसी कराएं, जिससे आप जो है खरीफ की अच्छी बुआई करें और अच्छी फसल का उत्पादन प्राप्त करें। अपने ऋण को 365 दिन के भीतर केसीसी ऋण का नवीनीकरण अवश्य कराएं। ऐसा कराने पर आपको 3% ब्याज में छूट मिलती है, तो इस छूट का अवश्य लाभ उठाएं। अगर हमारे किसान भाई जो किसी कारण से उनका लोन खराब हो गया है, बैड लोन जिसको NPA बोलते हैं हो गया है, तो आगामी जो भी लोक अदालतें हमारे यहाँ होती रहती हैं हर 2-3 महीने पर, उसका लाभ उठाते हुए अधिकतम छूट प्रदान करके ऋण के बोझ से मुक्ति पाएं।
1: बिल्कुल। आप रहे गणेश शंकर यादव भैया, अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या से केसीसी और फसल बीमा की योजनाएं, अग्रणी बैंक प्रबंधक जनपद अयोध्या के द्वारा काव मिलता है, यह सब विषय पर इतनी बढ़िया जानकारी दी। निश्चित पंच भैया अगर जानवर रखे हैं तो वो कई केसीसी या खेती में उनका जोन फसल आप बताएं कि तमाम फसल के नावलिन सब पे ऐसा ही बढ़िया है धनराशि, तो आप नवीनीकरण कर रही हैं तो बड़ी धनराशि के फायदा वह निश्चित पाई हैं। आप हमारी पंचायती में इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो कितनी बढ़िया जानकारी दी है जो श्री गणेश शंकर यादव और इनसे अपने राम प्रकाश पांडे कितना बढ़िया बता रहे हैं जो बाय। और आशा है अपन पंच भाई अगर ध्यान लगाए के रेडियो बाजा से अपन कान मने लगाए रहे सुनत रहे बढ़िया, तो उनका जरूर निश्चित तौर पर लाभ हुए। काहे सुन के दिमाग में रहा हुए कि हमें लोन चाहिए, कैसे प्रकार से चाहिए, कैसे कहो गए मने प्रक्रिया बात, तो बढ़िया जानकारी मिली। लेकिन यही जानकारी के साथ साथ पंचो जो मटे एक लोकगीत भी है अरविंद मौर्य और साथी कलाकार के शर्मा, खेतिया किसनिया की आई बेरिया, तो चलो सुना जाए पंचो।

0: पंचो देखो कितना बढ़िया अरविंद मौर्य और उनके साथी के शर्मा रहा ये किसानी लोकगीत खेतिया किसानिया की आई बेरिया। लेकिन पंचो जो भाई अपन जो रेडियो है ना एका सुने से कितनी जानकारी मिला था एका बहुत बताओ जरूरत ना पाए। कम से कम आकाशवाणी के 90 साल यानी कि बाह्य ध्वनांकन पर आधारित कार्यक्रम है रेडियो के 90 साल वाचन एवं संकलन राम प्रकाश पांडे प्रस्तुति जयंत पटेल यानी कि जो पंचो आओ ई बाह्य ध्वनांकन पर आधारित वो भी सुना जाए।
1: अपन नाम बताओ?
2: साधुराम यादव।
1: कौन गांव है?
2: मुमताज नगर।
1: अच्छा कितनी उम्र हुई?
2: 55।
1: 55 साल उम्र यह है। बिया कितने साल पे भार रहा हुई बताओ?
2: बिया कम से कम 18-19 साल।
1: पक्का बताया? कब कब मिला रहा कुछ याद है?
2: कुछ नहीं।
1: गाड़ी बाजा साइकिल सब ना बजो ना पाए रहे?
2: कुछ ना मिला रहा।
1: सही बताओ?
2: गाय मिले रही।
1: गाय पाए रहे? अच्छा बाजा कब से सुनो तो
2: बाजा तो बहुत दिन से सुने था छोटे पर से तब से
1: छोटे पर से कैसे सुने पाए जाते रहे?
2: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी जाना था? सही सही बताओ।
2: सही सही।
1: आप कब सुने रहे बचपन में?
2: अरे बहुत रहे 8-9 साल का।
1: अच्छा कहा ज्यादा सुनत रहे?
2: आला वाला बड़म
1: आला सुनत रहे? आला का वो करत है कि ना कब गए रहे? अरे याद होत रहे बिरहा गावत रहे पहले सब?
2: बिरहा गावत रहे
1: आप सब? ही ना गए पक्का
2: सब भुलाए गए कान में बिरहा? हाँ शुरू कर दे रहे।
1: अच्छा आपन नाम बतावे?
3: नारायण दत्त तिवारी मुमताज नगर।
1: अच्छा पंडित जी कितनी उम्र हुई लगभग?
3: 71।
1: आपका पता हुए कि आकाशवाणी यानी बजवा का 90 साल होगा?
3: हाँ।
1: कब से आप बाजा सुने हुई हैं?
3: अरे तब कमेंट्री और सब चीज कानो सुनत रहे।
1: कमेंट्री सुनत रहे?
3: और का
1: सही बताओ के थोड़ा कमेंट्री सुनत रहे?
3: अरे भारत पाकिस्तान के और जो जोन हुए
1: के अच्छा। हाँ। मने बजवा जुड़ा रहता रहा।
3: हाँ।
1: जैसे मने कहता रहा ना गरीब गाय बकरी।

0: गरीबन साधन।
1: अरे हुआ बाजा बनवाई।
0: हाँ।
1: अरे गुलाब बाड़ी यहाँ रामलीला मैदान के।
0: अच्छा।
1: हुआ बाजे और साइकिल में रात खिलाई, पता नहीं का हो जाए, यहाँ सर बजबे न करे।
0: हाँ।
1: तो कही कौन मेल बनाए भैया, फिर ले जाये सर।
0: हाँ।
1: तो हुआ बाजे यहाँ बजबे न करे। हम कहें जाओ भैया कहाँ
0: बजवा हुआ?
1: मोल ले रहे ना।
0: मोल कितने में खरीदे रहे हो पहली ना बाजा?
1: 650 के मर्फी बाजा मिलते रहा
0: तब।
1: हाँ तब सही।
0: अच्छा।
1: अरे जैसे अब हाई स्कूल और सब पढ़े लिखे मने थोड़े से प्राइमरी थोड़े ले ले।
0: हाँ।
1: आजकल जैसे मोबाइल चला बात 2 साल के बच्चे के दियो मोबाइल।
0: हाँ।
1: चुप।
0: अच्छा ये तो टीवी देखे ज्यादा अच्छा लगता रहा, को बजवा का अच्छा लगता रहा, तू का ज्यादा अच्छा का रहा?
1: अरे तब टीवी ना रही तब ब्लैक एंड व्हाइट रही, अब तो रंगीन हो गया। हाँ बाजम भाई चाहे जैसे भाई कहूँ क्रिकेट आज भाई और कहूँ सुने भाई खेते बगिया में चला जाओ और टीवी भाई घर माला में कहूँ उठ के जावे नहीं करे या साई भाई।
0: हाँ?
1: और चाहे जहाँ लेके बहरे चला जाओ बगिया में चला जाओ खेते चला जाओ।
0: सही कहा था।
1: और ये कहना अस्थाई भाई।
0: हाँ?
1: कहूँ लेके जा नहीं सकते हो वो लाइट से।
0: हाँ?
1: और केवल बाटिए से बिना सिस्टम कहना चाहे जहाँ लेके चला जाओ।
0: बिल्कुल। और एक चीज और रहते अपन काम करत रहा मनोरंजन।
1: हाँ, हाँ, वो करते
0: वो करत रहा।
1: हाँ चाहे आकाशवाणी लगा लियो चाहे विविध भारती लगा लियो।
0: हाँ।
1: चाहे 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक गाना वो का लगा लियो।
0: अच्छा।
1: हाँ?
0: अपन ये फैजाबाद सुने रहे अयोध्या?
1: हाँ सुने रहे कबो जो यहाँ फिल्म कोठिया लगा है नहीं आकाशवाणी।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: अरे
0: हाँ।
1: अरे वो बोला थे भाई आकाशवाणी केंद्र।
0: हाँ,
1: अयोध्या सब प्रोग्राम आवत रहा।
0: हाँ, का सुनत रहे बचपन से।
1: हाँ,
0: तब से का आवा।
1: हाँ, जब
0: 1993 से।
1: हाँ जब बाजा रहा तब से सुनत रहे। मैंने पहले बाजा दे दिया रहा तो मैंने हर जोत रहा जैसे जो कास्ट कर तो हाथिन मकान और टांगे रहे गटैन में टांगे रहे हर जोता करे विविध भारती अपन जो मनोरंजन गाना लगाए रहे किसान मने कानो गाने ये सब खेती वाला बहुत जे बहुत सब खेती वाला सुनत है। और जे छोट मोट मने खेती वाला सुनत है
0: गाना लगाए रहता रहा।
1: हाँ,
0: बैंड बदल बदल।
1: हाँ। नहीं अपन गाना खेत जोते थे और गाना लगाए अपन करे मनोरंजन चल तुम्हारे।
0: आप नाम बताओ?
2: सुनील कुमार चौरसिया।
0: अच्छा कौन गाँव है?
2: ग्राम पोस्ट मुमताज नगर।
0: अच्छा क्या करे थे ये बताओ?
2: खेती बाड़ी काम करते हैं।
0: खेती बाड़ी। अच्छा एक बात बताओ सही बताओ तो है अब का रहे कि हाँ बाजे के बारे में
2: पहले है? आज के बहुत दिन पहले हमने बचपन में अपने देखा था 30-35 साल हमारी उम्र है हमने देखा था पहले रेडियो था तो हमारे दादा दादा लोग लिए रहते थे उसको बजा देते थे तो सारी खबरें मिला करती थी तो हम लोग जैसे दादा दादाजी कई कोई काम करते रहते थे खेती बाड़ी का अपना काम भी करते रहते थे और एफएम और रेडियो का आवाज गाना है समाचार है हर चीजें वो बताता रहता था।
0: अच्छा।
2: हम लोग सुनते थे कभी कभी गाना आता था कोई कोई हम लोग भी सीखते थे उसमें भी कभी बोलते थे और जो जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो अपना हिसाब से देखते थे कभी बिरहा आया कभी भजन आया उसमें इससे मतलब जो नहीं जानकारियां उनको लोगों को मिलती थी कुछ बातें भूल
0: मतलब
2: जाते थे
0: बराबर रही। हाँ, जो उन्हें जो पसंद आए हाँ, थे तो
2: सुनत रहा मगर एक बार जब चालू हो जाता था हर लोग का हर मेल का गाना आया करता था हर चीज सुना करता था और समय बहुत बचाता था। आज के जैसे समय है मोबाइल है मोबाइल क्या है हाथ में लो गाना खाली सुनना है उसमें अगर हाथ से चलाते रहो आँख से देखते रहो ये चित्र चित्र देख के चित्र देख रहे हो गाना भी सुन रहे हो समय बर्बाद हो रहा। और पहले एफएम था खाली रेडियो चालू कर देते थे हर मेल का गाना सुना करते थे कोई भी काम करना था काम भी करा करते थे ध्यान भी रहता था। आज के युग में जो है खाली एक मोबाइल के हाथ में लिए रहो वही ध्यान रहता है।
0: आपका पता है रेडियो 90 साल हो गया है
2: उसकी उम्र हम बता नहीं सकते।
0: बिल्कुल अयोध्या है ये आकाशवाणी अयोध्या पहले फैजाबाद रहा तो अयोध्या
2: अयोध्या हो गया
0: है कि नहीं
2: वो तो है। अब भाई देखो पहले एफएम रेडियो कब शुरू हुआ है का नहीं बता सकते मगर जब से हम जानकार हुए तब से देखे थे कि हाँ लोग बहुत एफएम लिए रहते थे और उससे बहुत सी जानकारियां मिलती रहती थी तमाम चीजें रहता था।
0: सही कहा था सबसे सुंदर साधन रहा अच्छा गरीबी का तो सबसे अच्छा रहा
2: शादी ब्याह में गरीब आदमी रात रहे बाजा पाजा रहे रहे भैया अरे बाजा मिला घड़ी मिली साइकिल मिला और जैसे छोटी छोटी उतना आवाज काल था इतना सारी चीजें टीवी एलसीडी मिल रहा उतना लोग नाम कर रही
1: सबसे बढ़िया
2: जितना बैटरी लगती थी बैटरी जहाँ पाते थे तहाँ लेके चले जाते थे सुनते
0: सबसे
2: था बचाव से ही हमारा ही अच्छा है हर चीजें हर चीज मनोरंजन जानकारी के लिए चाहते थे लोग और वही चीज उसमें था।
3: राम कुबेर
0: ये बताओ बिया कैसा कौन सन में भरा हुए तुम्हारी याद है?
3: 7-8 साल के
0: रहना आई रही
3: सही
0: बताओ
3: सही बताई
0: तब पप्पू जी कैसे आओ तिर पंच भैया गांजे ना जनते उनका बताओ, आज के पीढ़ी तो जनती न हो।

0: पहले रक्षा से आउट रहे रक्षा से अब पैदल चला साइकिल सबके साइकिल ना रहत रही
1: बिल्कुल अब्दुल तो आरो रिसाई रहिंग ना तब
0: आ रही
1: पप्पू जी हम तो आए नहीं ना मन ही कहत रहा पेटे छपटाई से बियाह हो जाता का का पाए रहे हो तब बियाह हम कुछ याद है
0: हम भैया गगरा खाली पा रहे ना और रहा थरिया और बस
1: बजवा पाए रहे
0: ना
1: सही बताया
0: सही बताई बाजा मिला रहा ना साइकिल को
1: अच्छा ये बताओ बजवा सुने रहे बचपन में
0: हाँ वो करे बाद में हम बाजा खुद खरीदे रहे मार भैया खरीदे रहे बड़ा भाई मरपी बाजा खरीदे रहे
1: अच्छा
0: हाँ वही वही सुना था गाना वाना हाँ कोई माला हो
1: कई रुपए मिला रहा हुए बजवा तब
0: अरे 100 रुपए मिल रहा
1: अच्छा तब आए मरपी बाजा मिल जाता कहाँ ले रहे हैं
0: फैजाबाद
1: अच्छा ये मिल गया रहा वाह
2: पंचो देखो कितनी बढ़िया जानकारी रही रेडियो के 90 साल वाचन एवं संकलन राम प्रकाश पांडे जी के रही और प्रस्तुति जयंत पटेल जी का कितनी बढ़िया जानकारी रही जो मटे लेकिन यह जानकारी साथ साथ पंचो जो मैं काल अपने यह कार्यक्रम में है का रहे यहू कहा बताओ चले जो मैं लेकिन एक पहले जो मैं आज के जो मौसम का हालचाल मिला वो कुछ यह प्रकार से है अपने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से जो मौसम मिला वो कुछ यह प्रकार से है यानी अधिकतम जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा और जो न्यूनतम तापमान रहा वो 27.5 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 1.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 88% हवा की गति रही 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा का जो दिशा रही ना वो रही उत्तरी पश्चिमी आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है हवा सामान्य गति से पूर्वी पश्चिमी चले गए और औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है जैसे अब ही उस लू से राहत मिलने की संभावना नहीं बाटे है लेकिन पंचव काल ही का सुनिए यह कार्यक्रम में यह बता दी काल रहे कृषि जगत और चर्चा रहे बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें और भेंटवार्ता भी रहे हरी खाद उगाएं लाभ उठाएं विशेषज्ञ रहे डॉक्टर प्रभा शुक्ला और इनसे बतियाना है अपने प्रभाकर शुक्ला भैया बाकी लोकगीत तो राबा करिए और लेकिन पंचो एक साथ है हमका यानी सरजू का यह कार्यक्रम से दी अनुमति जय हिंद
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम इतना ही नहीं अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर शेर और गीत, 9:15 पर खेल खिलाड़ी और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। 8:00

30 मिनट पर प्रसारित होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इसके अंतर्गत आज की बात में विश्व महासागर दिवस, साथ ही वरिष्ठ साहित्यकार निरुपमा श्रीवास्तव से एक कहानी सुनिएगा उपहार। नौ बजे आपके संदेश, आपके गीत, 9:30 पर सजीव फोन इन हेलो अयोध्या, और 1 आप सुनेंगे फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। पर आप सुन सकते हैं विशेष श्रृंखला सरकार के 12 अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2 से। दोपहर 2:30 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना। इसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व महासागर दिवस और घर को सजाएं पेड़ पौधों से, साथ ही लोकगीत घरेलू सुझाव के अलावा पूनम सिंह की वार्ता होगी दहेज रूपी पाप से करो परहेज। शाम 5 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी विश्व महासागर दिवस पर, साथ ही करियर गाइडेंस में डॉक्टर रमेश कुमार जानकारी देंगे करियर के विविध आयाम पर। इसके अलावा रोजगार समाचार और आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से दिशा पांडे की बातचीत भी सुनिएगा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार। 6:10 पर शाम सुहानी और 6:30 का समय होगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मिट्टी की जांच आवश्यक। इसके अलावा लोकगीत बाजार भाव मौसम का हाल के अतिरिक्त श्री विनायक प्रताप शाही से भेंटवार्ता होगी आज के समय में बहुफसली खेती। 7:45 पर आप सुन सकते हैं विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष में अयोध्या जिले के ग्राम मुमताज नगर में जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं से बातचीत। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती।

0: परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई दो विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
1: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर फूटी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप

0: आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
1: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
0: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में एसडीआरएफ और पीएससी 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई दो विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: इस द पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
4: ये कुर्बानी बच्चा बच्चा नमन करेगा, श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा, गीत उन्हीं के गाएगा। साथियों, भारत अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन से दंगा फसाद चरम पर पहुंच गया था। सुंदर वादियों, कलकल बहती नदियां, हिम शिखर और मनमोहक रंगों से घिरे खूबसूरत फूलों के इलाके, ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई हो। सांप्रदायिकता की ज्वाला ने जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा, उसे अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके थे। हालात बड़े ही भयावह होते जा रहे थे। ऐसे में दुश्मनों की नजर पैनी हो चुकी थी। देश की आजादी के बाद दुश्मन सेना ने कबालियों के साथ मिलकर ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सन 1947 को उस समय जो वहां के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, जब उन्होंने मुजफ्फराबाद पर दुश्मन सेना के कब्जे की खबर सुनी तो उन्होंने खुद दुश्मन से मोर्चा लेने का फैसला करते हुए सैन्य वर्दी पहन ली और उन्होंने तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलवाया। ये बात सुनते ही कि महाराजा खुद युद्ध भूमि में उतरना चाहते हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उन्हें किसी तरह से समझाया कि उनका इस तरह से जाना सही नहीं है, वे खुद उनकी जगह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराजा हरि सिंह को मोर्चे से दूर रहने की सलाह दी। साथियों, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने महाराजा के साथ एक बैठक में अपनी योजना पर विचार किया और बाद में बादामी बाग पहुंचकर करीब 100 सिपाहियों से जाकर मुलाकात की और अपनी योजना समझाई। उन्होंने तत्काल ही सैन्य मुख्यालय को संपर्क किया और अपने लिए और सैनिकों के दल की मांग रखी। उस वक्त मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह मौजूद थे। उन्होंने करीब 70 जवानों को मोर्चे पर भेजने की बात कही और उधर महाराजा हरि सिंह ने मुख्यालय की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक लिखित आदेश दिया कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में दुश्मनों को आखिरी सांस और आखिरी जवान तक उरी के पास ही रोके रखें। कैप्टन ज्वाला सिंह संदेश के साथ 24 अक्टूबर की सुबह एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ उरी पहुंच गए। कैप्टन ने सैन्य टुकड़ी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सौंप दी और महाराजा का पत्र भी उन्हें दिया। इस मोर्चे पर वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे।

अब ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने अपने साथी कैप्टन नसीब सिंह को उरी नाली पर बने एक पुल को उड़ाने का हुक्म दे डाला ताकि दुश्मनों को रोका जा सके, उनके नापाक इरादों को रौंद दिया जाए। दुश्मनों की सेना में जब इसकी खबर लगी तो उनमें हलचल होना, रुकावट होना स्वाभाविक थी। अब क्या करें, कुछ समय के लिए वे रुक गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। हमला दोनों तरफ से भयंकर था। उरी का वो इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा था। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था। उस जगह करीब 2 घंटे बाद फिर से दुश्मनों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी थी, लेकिन तब तक पुल उड़ाया जा चुका था। वहां के सभी पुल लगभग तहस नहस कर दिए गए थे, यानी मार्ग बाधित कर दिया। शाम तक अपने मिशन के तहत ये कार्यवाही अंजाम ले चुकी थी, लेकिन उधर दुश्मन भी कब रुकने वाले थे, वे भी आ गए। साथियों, इसके बाद ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह ने रामपुर इलाके में दुश्मनों को रोकने का फैसला किया और काली स्याह रात में ही वे वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने लिए खंदक खोद डाली। रात भर कड़ी मेहनत कर जवानों ने खंदक खोदी थी, लेकिन सुबह तड़के ही दुश्मनों की सेना की गोलाबारी शुरू हो गई। इधर जवानों ने मोर्चाबंदी इतनी कर रखी थी कि पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, लेकिन दुश्मनों को 1 इंच भी आगे बढ़ने का मौका नसीब नहीं हो पाया था। वहीं दुश्मन की एक टुकड़ी ने पीछे के रास्ते से सड़क पर आकर घेरा, जिसके कारण महाराज के सिपाहियों को वहां से निकलने का रत्ती भर भी मौका ना मिल सके। यानी दुश्मन भी बड़ी शातिर तरीके अपना रहा था। युद्ध में ऐसा ही होता है, एक के बाद एक चाले योजनाएं बनाई और खेली जाती हैं। कब किसको सफलता मिलेगी यह कह पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बहादुर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर युद्ध में डटे रहते हैं। साथियों, उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मनों की योजना का पता चल चुका था और तकरीबन सुबह का समय रहा होगा, अपने साथियों को पीछे हटने और सेरी पुल पर डट जाने का आदेश दिया। पहली दुश्मनों की रुकावट को उन्होंने आसानी से खत्म कर दिया था, लेकिन अभी सिपाहियों के वाहनों का काफिला उस क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बोनियार मंदिर के पास से दुश्मनों की सेना ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी थी और काफिला इसकी चपेट में आ गया। दुश्मन की गोली वाहन चालक को जा लगी और वो वहीं शहीद हो गया। कैप्टन ज्वाला सिंह ने बड़ी तत्परता से अपनी गाड़ी के नीचे आकर देखा तो पाया कि तीनों वाहनों के चालक शहीद हो चुके थे। उन्हें ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह कहीं नजर नहीं आए, वे आश्चर्य में भर उठे थे। उधर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनका ड्राइवर भी शहीद हो चुका था। साथियों, वे आगे सेरी पुल के पास पहुंच चुके थे और गोलियों का जवाब देते जा रहे थे। अब तक वे काफी घायल भी हो चुके थे, लेकिन उनकी अद्भुत वीरता कम नहीं हुई थी। उनकी इस युद्ध में दाई टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी, लहू बह चला था। असहनीय पीड़ा के बीच वे मोर्चे पर डटे हुए थे। उन्होंने उसी समय अपने जवानों को आदेश दिया कि वे पीछे हटें और दुश्मनों को वहीं रोक कर रखें। वे इस स्थिति में नहीं थे कि उठ पाते। उन्हें जब सिपाहियों ने उठाने की कोशिश की तो वे अड़े रहे और उन्होंने कहा वो उन्हें पुलिया के नीचे उस स्थल में आड़ में लिटा दे। वे वहीं से

0: स्थिति में वे थे, फिर भी उन्होंने दोपहर तक युद्ध जारी रखा और अंत में उनकी वीर देह शांत हो गई। साथियों, इस तरह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सभी को उनकी वीरता, अदम्य साहस पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें दिल से नमन करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान।

साथियों, 26 अक्टूबर सन 1947 की शाम को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर समझौता हो चुका था। 26 अक्टूबर की तारीख ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ नाम कर गए। उनके इस बलिदान को शत शत नमन। अमर रहेगी ए वीरो तुम्हारी शौर्य की अमर कहानी, युगो युगो तक दोहराएंगे भारत के हर वासी। तुम हो भारत माँ के सच्चे रक्षक, तुम सा नहीं धरा पर कोई और सानी। फौजी साथियों, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को मरणोपरांत 26 जनवरी सन 1950 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

साथियों, आज की विशेष जयमाला में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जामवाल की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो दीजिए अब इजाजत। जय हिंद।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन। बांसुरी पर हैं श्रीधर किंग।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहाँ थी? तू तो अपने कमरे में नहीं थी।
1: तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है मामा, देखा मैंने चोरों को कैसे भगा दिया।
2: बेटी, डॉगी को कहाँ से ले आई?
1: पापा, मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई। डॉगी ने चोरों को भगा दिया, देखा।
0: बेटी, मेरा तो कलेजा ही निकल गया था।
2: अरे चलो, जान बची लाखों पाए, चोर भाग गए, अब सो जाओ चैन से।
0: तुम्हें तो हमेशा सोने की चिंता बहुत रहती है। अगर डॉगी ना आता तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो, घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है।
2: अरे भगवान, तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा।
1: शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना जरूरी है। अंकल चोपड़ा रोज रोज हमें डॉगी थोड़ी देंगे, उन्हें भी तो इसकी जरूरत है।
0: रजनी के पापा, लेकर आना, जरूर लेकर आना डॉगी को, लेकर आना।
1: मम्मी।
0: हाँ, अरे
1: मम्मी, उफो, उठो ना, देखो कितना दिन चढ़ाया है, मैं तो कॉलेज के लिए तैयार भी हो गई हूँ।
0: अरे रजनी, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं, कितना दिन चढ़ाया है?
1: मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी आप भी रात को देर तक जागती रहीं, मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें।
0: बेटी, सो तो ठीक है, पर सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
1: ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो।
0: अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती, फिर भी संभावना तो किसी बात की भी हो सकती है।
1: अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है।
0: चलो, अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए, पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना, वो हमारे भी घर आ सकते हैं।
1: इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए।
0: और क्या, अगर आज सपने में आए हैं तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा, इतनी बड़ी दुकान है, अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे।
1: मम्मी, इतना डरना ना ठीक नहीं है। बस
0: पर फिर भी सावधान रहने में हर्ज ही क्या है, तुम्हारे पापा जी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा, पर देखो अब तक नहीं आए।
1: पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना।
0: सो तो है ही, पर वो आए क्यों नहीं।
1: उफो मामा, देखो अब 8:30 बजने को है, मैं तो चली कॉलेज, बाय। लो, पापा जी भी आ गए। वाह वाह पापा जी, आप तो वाकई तो पिल्ले ले आए।
2: हाँ बेटी, मैंने सोचा एक पिल्ले का भी क्या ले जाना, दोनों ले चलता हूँ, दोनों।
0: हाँ, पहली बार किया कल का काम, अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट ही लिया था।
2: क्या कहा, क्या क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे?
1: पापा जी, आप तो सचमुच डर गए पापा। चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे।
0: मैं तो सपने में भी बहुत डर गई।
2: अरे मैं तो गाड़ी से उतर कर आ रहा था, तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था कि एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ वैसी बहुत बढ़िया है।
0: सच रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं।
1: मम्मा हाँ,
0: लगता है भूखे हैं बेचारे, देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। जा जरा दूध तो लेके आ, अभी पिलाते हैं।
1: पापा पापा, ये चूंचा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब पिल्ले हैं।
0: अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूंचा करेंगे, खास नस्ल के दिखते हैं।
1: ठीक है, अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ, मैं चली अब।

0: दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामलमीत।
1: शाबाश डॉगी शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो डॉगी, एकदम टाइगर हो टाइगर, शाबाश शाबाश डॉगी। मम्मी पापा पापा मम्मी, ओहो आप दोनों कोने में दुबके बैठे हो, अरे अब तो बाहर आ जाओ ना, चोरों को मैंने भगा दिया है।
2: अरे बेटी तू

0: Variate son que pilelero, lelo babu pilelero.
1: अरे हाँ भाई बिल्ले वाले, जरा इधर तो आना, आओ जरा।
2: बाबूजी, क्या आपने मुझे बुलाया?
1: अरे हाँ भाई, ये एक पिल्ला कितने का दिया?
2: जी आप ले लो, जो सो है ठीक ही लगा लेंगे, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे भाई तब भी बताओ तो कितने के हैं।
2: बस जी

0: दो ही रह गए हैं, जो है सो है, वैसे पूरे छे थे।
1: भाई तुम्हारे पिल्ले लगते तो बढ़िया किस्म के हैं।
0: जी मैं तो हमेशा ही बढ़िया माल बेचता हूँ कसम इन पिल्लों की।
1: अरे मियाँ शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
0: कसम इन पिल्लों की ना जाने कितने ग्राहकों से रोज वास्ता पड़ता है बाबू।